0: का पत्ता।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: मंगलवार 12 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

मैं भी चली अपनी गली लेकिन आपके साथ साथ 5:05। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नीतू आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। ये है आपके लिए राइज एंड शाइन। इस बरसाती मौसम में व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड, अपना ख्याल रखते हुए आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Wake up with the world तो बढ़िया है, लेकिन wake up good mood के साथ, good music के साथ, that's more important. 5:12, so whatever you might be, Radio Musti और नीतु भी आपके साथ है सुबह के 7 बजे तक. Hi, कैसी है ज्योति? नमस्ते, शतु बिना हस्ते. As usual, माधव परिवार आज ने रेखा और सुरेखा के लिए और हमारे लिए भी थैंक यू 5499 1294 पर आपके लिए मैसेजेस है व्हाट्सएप पर. गुड मॉर्निंग, आप हो धीरज, आयुष, विधि, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार मौदाव्य से अ वेरी गुड मॉर्निंग विश करेंगे आपको भी. यहाँ पर है कौन? अब्दुल सरावानु, कैसी हैं आप? आफ्टर सो लॉन्ग. हाँ, प्यार भरे नमस्कार आपको भी स्वीकार करें. हमारा भी मौसम है आशुकाना. माला सुमाहो कथोबोन से, आपके यहाँ मौसम कैसा है? इज इट रेनी या फिर मौसम बिल्कुल ठीक ठाक? राम राम जी आपको भी, भाई सूरज शर्मा, सजादा एंड पूरे परिवार, एंड ललिता एंड जितिन फैमिली, साथ में कुमार एंड देवीचंद फैमिली. एंजॉय माय डियर. 5499 1294 पर चलिए, जीवन को जीने का सलीका अगर आपको ना आए तो ये प्यारी प्यारी एवरग्रीन सॉन्ग्स गाने सुन लीजिए, वो खुद ब खुद आपको आ जाएगा, सीख लेंगे.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: शरारत फिल्म का ये सदाबहार गाना कल रात सपने में आए थे तुम। आपको याद है आपने सपने में क्या देखा? जो अगर आपका सपना सच हो जाए क्या बात है। 522 Bon courage to all those going to work। अगला गाना आपके नाम और पाकिजा वाला गाना सुनकर मीना कुमारी याद आ गई मेमोरीज। हाँ तो चलिए, और आप कहते हैं कि आप इस मूवी को देखने गए थे एंड अपनी बहनों के साथ। थैंक यू सो मच सरोज, राजन, मोनिका, पूनम, शिया, उमेश, अर्शी, अम्बला, शीतव, कैथुबोन एंड बस आप ऐसे ही एंजॉय करते रहें, यादों को आप उभरते रहते दीजिएगा और उनमें खोए रहते आप। कुछ दिनों कुछ बीते लम्हों से मुलाकात हुई, कुछ भूले हुए सपनों से बात हुई, याद जो करते करने बैठे थी तमाम यादों तो आपकी ही यादों से शुरुआत हुई। हमको लगा ही था कि ये आपकी ही हो सकती हैं आकाश एंड मनसुख परिवार। थैंक यू सो मच माय डियर। कैसी है नेहा? नमस्कार। अगला गाना गुजार टू हूँ नीतीश। आप उनको बहुत मिस कर रही हैं, वो सुन तो रहे हैं ना, अभी तक सोई नहीं है। नेवर माइंड, नेक्स्ट गाना आपके नाम पूरे परिवार के लिए। एक बर्थडे गाना हो जाए बेटा आनव के नाम। बेटा आज 6 साल का हुआ है। ब्लेसिंग्स टू यू बेटा फ्रॉम पापा राकेश, माँ शीतल, भाई तनव, तन्वी आपकी बहन, कुदन परिवार बेलवेदिया से हैं। अगला गाना आपके लिए भी है मनीष, अमर, राजा, बानी, जिसिक फैमिली, खुबलाल फ्रॉम रिवियर जोंपा, आपा डू फैमिली, गुड मॉर्निंग आपको। एंड ये अगला गाना गुजार टू हम, वेल यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे टू सिस्टर बेबी। और आपने गाने की फरमाइश की है, वैसे अभी तो गाने की फरमाइश है नहीं, हम कोशिश करते हैं अगर लिस्ट में है तो डेफिनेटली आपके नाम।

मौसम तो है लवली, एकदम औसम औसम, लेकिन इस बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। बीमार तो होना नहीं चाहते हैं, है ना? सो हैव योर गर्मा गर्म कप ऑफ चाय या फिर कॉफी घर से निकलने से पहले, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए नीतू आपके साथ आपके मैसेजेस के जरिए ऑन 5499 1294।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए सावन तो आ ही रहा है, लेकिन आपका होरोस्कोप आज का दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज मेष राशि।
1: आज आपके चारों तरफ खुशियों का जो है माहौल रहेगा और आपके अच्छे कामों की भी सराहना हो सकती है। शायद कोई पुरस्कार भी मिल जाए। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और बॉस आपसे बहुत ही खुश नजर आएंगे। संतान को दी गई जिम्मेदारी वो बखूबी भी निभाते चलेंगे।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज नौकरी पेशा लोगों के लिए शानदार दिन है। प्रमोशन या तरक्की की खबर आपको खुश कर देंगे। आपका दिल भी एकदम गुरी-गुरी हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। जीवन साथी के साथ शॉपिंग का मजा ले सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। निवेश करते समय खासकर शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज का दिन सामान्य लेकिन मौके से भरा है। नई प्रॉपर्टी लेने का विचार मन में आ रहा है और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस रखना होगा। कोई दोस्त किसी बात पर नाराज हो सकता है, दैट्स व्हाई शब्दों का ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचें वरना परेशानी बढ़ सकती है। और परिवार में शादी से जुड़ी अड़चन दूर होने की आपसे यानी कि उनसे दूर होने के लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत लगनी होगी, करनी होगी और बाद में आपको खुशी भी होगी।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज का दिन सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में खर्च तो जरूर करेंगे। संतान की कोई इच्छा पूरी करने का मन बनेगा, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान भी दे सकता है।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी चमक अलग ही नजर आएगी और आप नाम कमाएंगे। पुराने कर्ज से सेहत मिल राहत मिल सकती है, लेकिन आय पर ध्यान देना जरूरी है। सेहत को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप ले सकती हैं। पढ़ाई में ध्यान ना देने पर छात्रों को दिक्कतें आ सकती हैं। खास लोगों से मुलाकात आपके बिजनेस को नई दिशा देगी।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन मिला जुला रहेगा। संतान के करियर को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा। बड़ों से किया हुआ वादा भूलना भारी पड़ सकता है। आसपास के लोगों को पहचान कर ही आगे बढ़े। बैंकिंग या निवेश से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी अच्छा है।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई जो सौदा परेशानी खड़ी कर सकता है। संतान के जो एडमिशन को लेकर नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी को उधार देना रिश्तों में दरार डाल सकता है। और बड़ों की सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: मौसम बदल रहा है, सो आज सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर पान जो खान पान है, आपके जो लापरवाही है उसको आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। परेशानी आपको हो सकती है। घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है, जिसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी। बाकी कामों में थोड़ी ढिलाई रह सकती है। ऑफिस में मनचाहा काम ना मिलने से मन उदास भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां आपको निभानी तो होगी।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज का दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है। घर खर्च करते समय अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। अटका हुआ सरकारी काम पूरा हो सकता है, लेकिन बेवजह घूमने फिरने से बचें वरना रिश्तों में करवाहट आ भी सकती है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: बिजनेस में शानदार लाभ के योग हैं। आपकी योजनाएं आपको आगे बढ़ाएंगी। किसी पर भरोसा करने से पहले सोच विचार जरूर करें। परिवार में एकता बनाए रखना जरूरी होगा। संतान आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकती है, जिससे आगे परेशानी भी हो सकती है। ऑफिस में बॉस की बातों पर ध्यान देना फायदेमंद होगा।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपका नया घर लेने का सपना पूरा हो सकता है। काम में मेहनत ही सफलता दिलाएगी, इसलिए किसी पर निर्भर ना रहें। पुरानी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से सलाह लें। किसी राजनीतिक मित्र से मुलाकात हो सकती है और बड़ों से बातचीत आपको सही दिशा देगी।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: एंड फाइनली आपके लिए ये आज बहस से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी, वरना बात बिगड़ सकती है। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर भेजने का विचार बन सकता है। बिजनेस की परेशानियां कम होंगी। लाइफ पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आपकी नई कोशिशें सफल हो सकती हैं और पुराने दोस्तों से मुलाकात दिल को खुशी देगी। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

आशा हूँ कि सावन में आपका भी नाम जोड़ते हैं। प्रणाम आपको। यहाँ पर है मेरे बहन बेटे नितेश, फैमिली फ्रेंड्स हैं और आप है मीना रामदिकल मोता ब्लॉश से। गुड मॉर्निंग विनीता मोहन, गाना आपके हबी, आपके पूरे परिवार आनंद, अरुण, श्रिधि, साथ में है निशा एंड सभी लिसनर्स के नाम। आपको भी नमस्कार सोनम भोला। और आपकी बहनें हैं सीला, बीना, मीला, नीरा और भाई आपके मॉम, पूरे परिवार के नाम। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड अगले गाने की ओर बढ़ते हैं जो हमें ले जाएगा कहाँ, 6 बजे के समाचारों तक। अरुणा बल्कि आशना काल्या चेती ऑफ गुड लेंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। गर्वी तेजनी मामू विनय विक्रम, मामी है लीना बल्कि रीना, लावोचा से है पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रेडियो मस्ती।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Shiva ji hai. सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे सुमेरा। नमस्कार आपको।
7: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के गैर हाजिरी में अयाना वोमाही अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक के मुशर्रफ द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाज़ों पर सवाल किए जाएंगे। एमरसस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब इन वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाज़ों को बेचा गया था जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान हुए। राज रामलगन क्रोल जाँच के बारे में भी पूछ रहे हैं। मुशर्रफ में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों तथा इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। कैथबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है लेकिन कैथबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा करती है। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर के एस थॉमस से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार के उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह और दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। खासतौर पर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। आज रात घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊँची लहरें उठेंगी दक्षिण वाली लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
9: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
5: Radio Musti.

छह बजकर 10 मिनट वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बस प्यार का ये बंधन है, दिल का ये बंधन है, कभी ना टूटे और कभी ना छूटे हमारा साथ आपका हाथ। थैंक यू सो मच 5499 1294 पर आपके मैसेजेस आ रही हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग।

इस बंधन को जो समझ जाए ना उनकी जिंदगी आबाद, और जो ना समझे वो बस ऐसे ही भटकते रहते हैं। थैंक यू सो मच बदवक विदेशी और अनुषा के नाम पूरे परिवार के लिए। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको यहाँ पर। बर्थडे विशेस आपके लिए भाभी पल्लवी और आपके हबी रितेश, ससुर जी हैं सुनील, दीदी रीना, आरव, साथ में है कौन, बिसेसो परिवार मोसेलमा से और सोहावन परिवार कारोलिन बेलेरिवियासेश से। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको हेमा, स्वीट पारुषी परिधि, पृथ्वी, प्रिया, निशिका, नितिन, विशाल, यनेश एंड एज यूजुअल थैंक यू सो मच हमारे लिए भी। और बबीता हैं आप हो फ्रॉम बोनाकाय, सो वेयर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड। अगला गाना आप सबके लिए दिल को सुकून दिलाते हुए।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
2: अपना बिजनेस शुरू करना है या अपने करंट बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो याद रखिए SBM SME बैंकिंग सिर्फ बैंक नहीं, आपका ग्रोथ पार्टनर है। अब खर्चों को अपनी तरक्की में रुकावट ना बनने दे, अपने लोन्स को रीफाइनेंस कीजिए और अपने खर्चों पर बेटर कंट्रोल पाइए, या फिर अपने स्टार्टअप ड्रीम को आज ही एक्शन में बदलिए। चाहे इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो, कैश फ्लो सपोर्ट हो या एक्सपेंशन प्लान्स, हमारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस उड़ान भरेगा। आज ही कॉल कीजिए ऑन 2070111 या विजिट कीजिए sbmgroup.mu। SBM SME बैंकिंग, साथ है तो ग्रोथ है। ये ऑफर कुछ शर्तों के साथ आता है। SBM बैंक ऑफ मॉरिशस के लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: हम तो सुन रहे हैं, आप भी सुनते चले और 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। हैप्पी 99th बर्थडे टू लवली दादी सना समा पेंसी, और ये हैं किन की तरफ से दास माला रविश प्रीशा लवशा पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

इस प्यारी सी कहानी में आपका नाम भी जोड़ते हैं रेनू, वो भी आप है फ्रॉम पिच काफी। ऑलराइट, विशिंग फ्रेंड गायत्री अ हैप्पी बर्थडे।

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में आज अगियान नवोमागी राष्ट्रसभा में उनकी भूमिका निभाएंगी। पीएमक्यूटी सत्र के प्रश्न, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को संबोधित। राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। एमोरस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजराम लगन ने दी ये जानकारियां। एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू किया जाएगा। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन को पर काबू रखा जा सकेगा। और ब्रिटेन में राजनीतिक तलातुम, सर केयर स्टॉर्मर से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। नमस्कार और आदाब। आज राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की गैर हाजिरी में अगियान नवोमागी अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक एमरशस द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाजों पर सवाल किए जाएंगे। लुवीना सूफी और प्रणव विहार की रिपोर्ट पर पूजा सुकालू का विवरण।
1: घोंबे पुद्रदो के सांसद नीतीश बिजान ने 2014 से 2024 के बीच एयरमार्शल्स द्वारा बेचे गए विमानों, उनकी सेवा अवधि तथा खरीदे या लीज पर लिए गए विमानों के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कुछ विमानों के सेवा से बाहर रहने की घटनाओं की संख्या, उनके कारण और इन घटनाओं की अवधि के बारे में भी जानकारी चाही है। याद रहे कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 के बीच वॉलंटरी प्रशासन के दौरान एयर मार्शल्स के 5 विमान बेच दिए गए थे, जबकि उनकी जगह 2 पुराने एयरबस A330 विमान लीज पर लिए गए थे, जिनमें तकनीकी समस्याएं भी थी। फ्लीट प्रबंधन की फोरेंसिक जांच अंतर्राष्ट्रीय क्रॉल नामक फर्म द्वारा की गई थी। इसके अलावा एयर मार्शल्स और ग्रांट अटॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के बीच हुई लेन देन के मामले में ग्रांट अटॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ और एयर मार्शल्स के पूर्व प्रशासक सातो हाजी अब्दुल्ला को पिछले 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
0: एमरशस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब जहाजों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान भी हुए। राज रामलगन क्रोल जांच के बारे में भी पूछ रहे हैं। उनको सुनते हैं, लुवीना सूफी ने उनसे बात की।
2: Bien et la transparence, c'est pas le pas cause 5, c'est le pas cause 10, le pas cause par milliards de roupies qui finalent. Et à Mauritius, je vous dis, les pas cause des servies, beaucoup de destinations malgré qui finalement une reprise, avec un problème qui est dans le Moyen-Orient, et dans une opportunité qui peut venir, mais nous pas non. Le pas cause avion, finit aussi délester beaucoup de personnel qualifié. C'est un scandale, mon pensée. Tant qu'il peut dans une preuve et peut dans la clarité de tout ce qu'on a fait là, mais mon pensée, la question au Parlement s'impose. Moi, mon pensée, qui même si vous avez un comité parlementaire pour faire la lumière sur tout ce qui ne passait sous le règne de l'administration volontaire, même sous EHL après, jusqu'à ce qu'il y ait un Mauritius délisté en le 31 mars 2022 de la bourse de Maurice.
0: राष्ट्रसभा में मॉरिशस और चीन के व्यापारिक संबंधों पर सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा बिजली के दामों में बढ़ोतरी, स्पोर्ट्स में शासन की बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विदेशी कामगारों पर बहस की जाएंगी। लो एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल पूछे जाएंगे, खासतौर पर बोबासा कैदखाने में 2 कैदियों की मौत के सिलसिले में। लुवीना सूफी, पूजा सुकालू।
1: 3 प्रश्न जेल व्यवस्था से संबंधित है। रोड्रिक्स के सांसद जैनेट ऑरियत मनन ये जानना चाहती हैं कि दिसंबर 2025 से बोबासा जेल में कितने कैदी मृत पाए गए, साथ ही इन मौतों का कारण प्राकृतिक या संदिग्ध थे, और कैदियों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम कौन कौन से हैं। सांसद अनाबेल सवाबादी अंतरिम प्रधानमंत्री अगियान नवोमागी से जेफ एलेक्स पेरिन की 1 मई को हुई मृत्यु के संबंध में पूछताछ करेंगी, साथ ही जांच की प्रगति और संभावित न्यायिक जांच के खोलने के बारे में भी सवाल करेंगी। 5 मई को बुबासे जेल में जैन सोमी की मृत्यु का मामला भी सांसद रुबना दोगियाऊ द्वारा उठाया जाएगा। और आखिर में सांसद होशन जमन ये जानना चाहेंगे कि 2014 से अब तक कितने पुलिसकर्मी मादक पदार्थों के तस्करी के आरोप में गिरफ्तार या निलंबित किए गए, कितनी सजा हुई है और अन्य मामलों की प्रगति की स्थिति क्या है।
0: विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुर्शन परिवर्तन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डालती हैं। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए माध्यम और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश पेश की गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के समन्वयन के वास्ते एक क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया है। यचना मिश्रा।
3: यदि ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना रहता है तो साल 2050 तक पर्यटन से होने वाले कारोबार में 17% तक की गिरावट आ सकती है। खतरे अनेक हैं, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, पीने योग्य पानी की कमी तथा तटीय रिसाव। IFC के विशेषज्ञों और स्थानीय ऑपरेटरों के सर्वेक्षण के अनुसार ये खतरे वास्तविक हैं और इन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। मौजूदा मॉडल को बदलना होगा ताकि अधिक टिकाऊ और उच्च आमदनी वाली पर्यटन प्रणाली को बढ़ावा मिले।
4: This report can help.
3: इस रिपोर्ट से मॉरिशस एक सकारात्मक चरण से ज्यादा विकास की ओर बढ़ सकता है। अगला चरण मात्र ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं बल्कि धनराशि बढ़ाना भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम देना चाहिए। पर्यटकों को मात्र समंदर ही नहीं बल्कि संस्कृति, प्राकृतिक विविधता और अलग अनुभवों की ओर आकर्षित करना होगा। इन खतरों का सामना करने के लिए रिपोर्ट में तटीय सुरक्षा, पर्यावरण प्रिय बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन में अधिक निवेश की सिफारिश दी गई है, लेकिन वित्तीय संसाधनों तक पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है।
5: 90% nous l'offre d'hébergement trouve sur les côtes.
3: 90% आवास समुद्री इलाकों में हैं। पर्यावरण संकट के बारे में सब जानते हैं। 2075 तक 50% तट लुप्त हो जाएंगे। ये आपात स्थिति है। टिकाऊ विकास मात्र कहने के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे एक ठोस योजना कायम करना जरूरी है जो निर्धारित करे कि आगे क्या किया जाए। सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक समावेशी उत्तरदायित्व भी है। हालांकि मॉरिशस ने कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी आकर्षण क्षमता बनाए रखी है, आगमन और कारोबार दोनों के संदर्भ में, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने पर्यटन क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करना होगा।
0: मॉरिशस में पर्यावरण को लेकर एक बड़ा कदम तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। शैली नियबन, पूजा सुकालू।
1: डाइऑक्सिन, फुरान, भारी धातुएं और मर्क्यूरी, ये अत्यधिक टॉक्सिक पदार्थ बेहद कम स्तरों पर मापे जाते हैं। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति क्यूबिक मीटर 0.1 नैनोग्राम तक, और इन्हें कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर और विकास संबंधी समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जोड़ा जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम ये है कि अब इंसिनरेटर को न्यूनतम 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलाना होगा ताकि इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को सीमित किया जा सके। ये आवश्यकता यूरोपीय संघ की प्रथाओं के अनुरूप है। उद्योगों को इन नए मानकों का पालन करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। ये अपेक्षाकृत छोटा समय सीमा है जो कभी कभी लाखों रुपए तक की लागत वाले फिल्ट्रेशन तकनीकों में निवेश की आवश्यकता पैदा कर सकता है। हालांकि ये सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस दिशा में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन याद दिलाता है कि दुनिया का अधिकांश आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है, ये आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। सरकार हालांकि कुछ मामलों में छूट देने की संभावना रखती है जो इन नए मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है।
0: कैथ्रोबोल में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, लेकिन कैथ्रोबोल के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा करती है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथ्रोबोल के मेयर गुदी ब्रायन केनु का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मुर्शिद टेलीकॉम ने कल माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके तहत नौजवानों को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माँ बाप की बढ़ती चिंताएं दूर करने का मकसद रखती है। उर्वशी बिकारी बंजन, यचना मिश्रा।
3: डिजिटल दुनिया से जुड़े खतरे जैसे अनुचित सामग्री, साइबर उत्पीड़न और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग कई अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन बच्चों के इंटरनेट उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन से माता पिता निर्धारित कर सकेंगे कि बच्चे कब इंटरनेट का प्रयोग करें, दिन के दौरान बच्चा कहाँ है, दूसरे ऐप पर जाने से उन्हें रोकना सब संभव है। ये सेवा माता पिता को कई उपकरणों पर अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा। अभिभावक इस टूल को अपने मोबाइल, पीसी आदि पर इंस्टॉल कर सकते हैं। 15 डिवाइसेस को सुरक्षित किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन दो पैकेज में उपलब्ध है।
0: क्या मीडिया के लिए मॉरिशस में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इसी हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत बुलेल ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील बुलेल ने सन 2013 में जुरिस्ट जियोफ्रे रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आज़ाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाने का दर्ज देना। इसके जरिए न सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आज़ादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। और अब विदेश। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुराने बयानों को तर्क करने की मांग की, यानी अफ्रीका के लिए दूसरों का फैसला। अफ्रीका राष्ट्र एवं सरकारी नेताओं के सामने इमैनुएल मैक्रों ने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही। ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर केस थॉमस से उनके इस्तीफे का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। ये समझा जा रहा है कि कैबिनेट में महमूद उन लोगों की माइनॉरिटी में हैं जो चाहते हैं कि सरकार अपने पद छोड़ने का टाइम टेबल दें। आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई जाएगी। यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों ने कल इसराइलियों के लिए नई पाबंदियों पर सहमति जताई क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइलियों के हमलों में काफी तेजी आ गई। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि अब वक्त आ गया है।

तरक्की कदम उठाया जाए। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटों में, खासतौर पर कोहरे छाए रहेंगे। आज रात घने बादल होंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:42 पर सूरज ढल जाएगा।

0: आज की बड़ी खबर एक बार फिर से पेश है। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में आज अगियान नवमागी राष्ट्रीय सभा में उनकी भूमिका निभाएंगे। पीएमक्यूटी सत्र के प्रश्न, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को संबोधित। राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। एमरसस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजराम लगन ने दी ये जानकारियां। एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू किया जाएगा। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों तथा इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। और ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक तलातुम, सर केस थॉमस से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है, बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: सीबी रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 years old श्रीमती मुतिया परमा, पैदाइशी नाम बोईरामबोली जो दानू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर सीबी रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू सामी मुकामी 47 साल के 47 years old श्री विक्रम सुरनाम जो विक्रम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके पिता ईश्वरलाल सुरनाम के घर एवेन्यू सामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 46 साल की 46 years old श्रीमती कल्याणी देवी कार्तिक पैदाइशी नाम सुंदर जो कल्याणी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनकी रिश्तेदार बुनियाद संध्या के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM ब्रांच रोड लालमाची में 78 साल की 78 years old श्रीमती रुमावती बसोआ जो रुमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति रामानंद सिंह बसोआ के घर ब्रांच रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM मौसलमा औजी फ्लैक में 72 साल की 72 years old श्रीमती मांगती हरदोस पैदाइशी नाम नौरंग जो मिलानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति सूरजलाल हरदोस के घर मोसलमा औजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM पावे रोड पिचराफ्रे में 72 साल के 72 years old

0: श्री ज्ञानदत्त बोला, श्री ज्ञानदत्त बोला, जो ज्ञानदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है, अर्थ ही आज डेढ़ बजे। आज डेढ़ बजे इनकी पत्नी नालिनी भोला के घर पावे रोड पिचिकाफ़े से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कार पिचिकाफ़े की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे, क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM एडुलेन ओरिएटा वाकवा में 71 साल की 71 years old श्रीमती दुर्गावती पौसन, श्रीमती दुर्गावती पौसन, पैदाइशी नाम शेर सिंह, जो शालू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 12 बजे। आज 12 बजे इनके बेटे आशीष पौसन के घर एडुलेन ओरिएटा वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड क्लेमोसिया में 58 साल की 58 years old श्रीमती कुंती वुसाई, श्रीमती कुंती वुसाई, पैदाइशी नाम चितामन जीउल, जो कल्याणी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 11 बजे। आज 11 बजे इनके बेटे अखिलेश वुसाई के घर रॉयल रोड क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमोसिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM बुजुलेन पायुत काथ्रबोन में 72 साल के 72 years old श्री भानुदत्त बटू, श्री भानुदत्त बटू, जो आनंद बटू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थ है आज 2 बजे। आज 2 बजे इनके घर बुजुलेन पायुत काथ्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वा मामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रेलवे रोड केवल नगर बेलरीव में 84 साल की 84 years old श्रीमती बसंती बागीरथी, श्रीमती बसंती बागीरथी, पैदाशी नाम तोकई, जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 1 बजे। आज 1 बजे इनके बेटे धीरज बागीरथी के घर रेलवे रोड केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड पायुत काथ्रबोन में 93 साल के 93 years old श्री हे रामन अनूप, श्री हे रामन अनूप, जो जगदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 10 बजे। आज 10 बजे के घर रॉयल रोड पायुत काथ्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सीउनट, श्रीमती पारो सीउनट, पैदाइशी नाम सुबा, जो पारो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थ ही आज 2 बजे। आज 2 बजे इनके पति धनराज सीउनट के घर शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दी क्रियोल में 70 साल की 70 years old श्रीमती सुमित बर्ना, श्रीमती सुमित बर्ना, पैदाइशी नाम लड्रू, जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 1:30 बजे। आज 1:30 बजे इनके पति किशुन बर्ना के घर रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दी क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो लेन में बर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM जॉर्ज विक्टर किवन पोर्ट लुई में 69 साल के 69 years old श्री जयन कुमार फुलबसिया, श्री जयन कुमार फुलबसिया, जो जयन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और काली माई काशी के अध्यक्ष थे, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 12 बजे। आज 12 बजे इनके घर नंबर 4 जॉर्ज विक्टर केवेंस बोटलुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून रॉयल रोड लालमाची में 72 साल के 72 years old श्री सच्चिदानंद रामास्वामी, श्री सच्चिदानंद रामास्वामी, जो सत्यानंद कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थ आज 11 बजे। आज 11 बजे इनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के घर रॉयल रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM शोक मधुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM2 Radio Masti.
2: Already 6:55, so have a nice day ahead. Stay safe और please drive carefully अगर आप इस वक्त रास्ते पर हैं. थोड़ी देर में मॉर्निंग वेट विकास के साथ. Take care, bye bye.

0: A super good morning आप सभी को. Time check, it's 7 AM.
1: Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: Radio Masti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Masti.
1: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Masti.
1: Feel the Masti.
0: 12th of May, it's time for
3: Morning Beat.
1: James. RM2, Radio Masti in the mix.
0: हेलो जी, आ गया मंगलवार और हमेशा के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार टू गिव एन एक्सपीरियंस दैट्स बेशुमार.

0: से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ। वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2
2: Radio Musti.
3: हाँ ठीक है, फिल्मों के अंदर ये बड़े बड़े डायलॉग्स ठीक लगते हैं, लेकिन साहब अभी मॉर्निंग में जब भागा दौड़ी हो ऐसे में रेस लगाना, नो इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। हाँ जी, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पर एक गेम आ गया है, राइट, अभी आप जीत सकते हैं एक वाउचर, आपको बताएं एक गुडी बैग इनफैक्ट। ये है जो गेम इज ब्रॉट टू यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यस, द गेम ब्रॉट टू यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वह जरूरी है कि वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक ये मना रहे हैं, और आपको बता दें कि स्पेशल एक प्रोग्राम है, एक सेगमेंट है ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ने ये हफ्ता बना लिया है, कैंपेन है एक टू रेज अवेयरनेस कि जितने भी रोड के डेंजर्स हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। और थीम जो है वो है सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियंस और जो साइकिलिस्ट है ना, बस सेफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्दी सिटीज। तो होता है कि हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग अपनी जिंदगी गवा बैठते हैं रोड्स पर वर्ल्ड वाइड, और मिलियंस या उससे ज़्यादा आर इंजर्ड। पेडेस्ट्रियंस हो, साइकिलिस्ट हो, मोटरसाइकिलिस्ट हो, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। रोड सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हमारी, चाहे वो स्पीड लिमिट हो या फिर हेलमेट पहनना हो, सीट बेल्ट या फिर बहुत ध्यान से चलाना हो, ये सब इसमें शामिल है। तो बस इस रोड सेफ्टी वीक के दौरान बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होने वाली हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपके लिए अब जीतने का मौका, आपको मिल सकता है गुडी बैग 3,000 से 3,500 रुपए का। लेकिन आपको बता दें जो गुडी बैग है कुड बी कलेक्टेड आज फ्रॉम द 14th of May एट द MBC। आपके लिए क्वेश्चन आज के लिए यानी कि 12th of May भैया होता है कि वट इक्विपमेंट शुड साइकिलिस्ट वेयर फॉर देयर सेफ्टी, वो कौन सा इक्विपमेंट है जो कि साइकिलिस्ट को पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। आपके जवाब 5499124 पर।
1: A good beat for your morning show. Come on. Morning beat. RM2.
2: Radio Musti.
3: Now this one's called Zubi Zubi Zubi. Participate kar le tu bhi. Jai, it's so nice, Jai. Old style, na? Right?

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: और जी मॉर्निंग का टाइम और ऐसे में भागा दौड़ी चलती है, लेकिन साथ में ऐसी बारिश हो, ऐसा मौसम हो तो लगता है कि कहीं रुक ना जाए, कहीं फिसल ना जाए। बी केयरफुल, केयरफुल अपने लिए, अपने के लिए, और सेफ्टी तो सबके लिए जरूरी जरूरी ही है। शेड स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, और क्वेश्चन ये था कि व्हाट इक्विपमेंट शुड साइक्लिस्ट वेयर फॉर देयर सेफ्टी। सही जवाब है एक हेलमेट और विजिबल या फिर रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग। ये बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो चलिए बताते हैं कौन है लकी विनर। राइट, सही जवाब देके बन गए लकी विनर। ये है विदुला रामजतन जो कि हैं बुबासे से। कांग्रेचुलेशंस, आपने दिया बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलता है गुडी बैग। राइट, एक गुडी बैग आपको मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। वैसे उनका जो चल रहा है अभी कैंपेन वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026, इसके दौरान आपने सही जवाब दिया, और आपको बता दें जो गुडी बैग है आपके लिए कर सकते हैं आज फ्रॉम द 14th ऑफ मे। याद रखिए, आज फ्रॉम द 14th ऑफ मे एमबीसी आना होगा अपने आईडी कार्ड के साथ, और ये नाम हो गया आपके नाम। कांग्रेचुलेशंस। एक बार फिर से याद ला दें, दिस गेम वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। एक बार फिर से हमारे विनर को कांग्रेचुलेशंस।
2: RM2 रेडियो मस्ती, The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti feels a Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: Right, थोड़ी देर में चलने वाले स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ और वहीं पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बर्थडे या किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं या फिर किसी को एकदम से विश करना चाहते हैं स्पेशल स्टाइल से, सो डोंट फॉरगेट टू सेंड द डिटेल्स.
2: You're listening to Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: राइट 12th ऑफ मई लेडीज एंड जेंटलमैन, और आपको बताया कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल भी है भाई उनके लिए भी जो अपना बर्थडे मना रहे हैं. सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द होल टीम. और वहीं पर आज का दिन उन फरिश्तों के नाम है जो खुद थक जाते हैं लेकिन हमें कभी टूटने नहीं देते. राइट, वी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज. सो सभी नर्सेज को सैल्यूट फ्रॉम द RM2 टीम. हर हॉस्पिटल की हार्ट बीट, हर पेशेंट की उम्मीद और हर मुश्किल रात की हिम्मत बनती है ये नर्सेज. सो आप सभी को अभी हेलो. भाई पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल नर्सेज डे, एक ऐसा दिन जो सेलिब्रेट करता है उन लोगों को जो ड्यूटी को सिर्फ काम नहीं सेवा समझते हैं. चाहे बारिश हो या तूफान, दिन हो या रात, नर्सेज हमेशा खड़ी रहती हैं एक मुस्कुराहट और एक होप के साथ. और आपको पता है ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे भाई इसी पर मनाया जाता है जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन रखी थी. तो रेडियो के इस प्लेटफॉर्म से हम सैल्यूट करना चाहेंगे उन सभी को जो इस प्रोफेशन में, इस नोबल प्रोफेशन में जुड़े हैं. एंड टू ऑल द लेडीज आउट देयर, कीप द गुड वर्क गोइंग ऑन.
1: वेलकम टू रेडियो मस्ती, चेक दिस आउट, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए ऐसा करते हैं कि अब स्पोर्ट्स की दुनिया में एंट्री मारते हैं।
4: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
5: Sports news, latest updates.
6: Sports news.
1: Radio Musti in the mix.
3: चल साहब, स्पोर्ट्स की दुनिया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे टोटनहम अब क्या कर रहा है भाई? कह रहे हैं कि मार ली कुल्हाड़ी और किसकी परफॉर्मेंस पड़ी किस पर भारी, ये सब जानने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अरविंद, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
7: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। टोटनहम हॉटस्पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा मौका था रिलीगेशन जोन से 4 अंक ऊपर जाने के लिए, पर मौके का फायदा नहीं उठा पाए द स्पर्स। लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ मैच रहा, आगे जाकर पछताने वाला रिजल्ट हो सकता है। टोटनहम हॉटस्पर का गोल टेल ने स्कोर किया, उसी टेल ने अपनी टीम को गर्म तेल में फेंक दिया एक पेनाल्टी कंसीड करके। कैल्वर्ट लेविन ने लीड्स के लिए इक्वलाइज किया। टोटनहम हॉटस्पर के गोलकीपर किंस्की ने कई बार अपनी टीम को बचाया। प्रकार रिलीगेशन बैटल में टोटनहम हॉटस्पर अभी वेस्ट हैम से केवल 2 अंक आगे हैं, बचे हैं 2 मैच। चेल्सी खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ, यानी टोटनहम हॉटस्पर के लिए एवे मैच, और टोटनहम हॉटस्पर का आखिरी मैच होगा एवर्टन के खिलाफ, ये होम मैच होगा। वेस्ट हैम यूनाइटेड जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में, और उसका आखिरी मैच होगा लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। कल एक मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, और फ्राइडे को शुक्रवार को एस्टन विला लिवरपूल से लोहा लेगा। इस सैटरडे को, इस शनिवार को प्रीमियर लीग के मैच नहीं है, क्योंकि एफए कप का फाइनल खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच। संडे को कई मैच हैं। आर्सेनल खेलेगा अगले मंडे को, अगले सोमवार को बर्नले के खिलाफ। प्रीमियर लीग में आने के लिए प्रमोशन प्लेऑफ के फाइनल में पहुंची हल सिटी की टीम। सेमीफाइनल के रिटर्न लेग में एवे जाकर हल निकल पाया। मिलवॉल की दीवारें कमजोर थी, 2-0 से हल की जीत। आज साउथम्पटन का मुकाबला मिडल्सब्रो से है। फर्स्ट लेग में मैच ड्रॉ गया था 0-0। इटली के सेरी आ में नापोली की हार, बोलोनिया ने उसे 3-2 से हराया। स्पेन के लालीगा में रायो वालेकानो और जिरोना के बीच मैच ड्रॉ 1-1। आज 3 मैच खेले जाएंगे। सेल्टा वीगो लेवेंटे, बेटिस एल्चे और ओसासुना एथलेटिको मैड्रिड। इंडियन सुपर लीग में कल ईस्ट बंगाल और पंजाब के बीच मैच ड्रॉ 0-0। आज मोहन बगान का मुकाबला इंटर काशी से होगा। प्रीमियर लीग सीजन समाप्ति पर है। नए खिलाड़ियों की तलाश में कई टीमें धार तेज करने लगी हैं। वेस्ट हैम यूनाइटेड के कप्तान याहूद बोएन के लिए लिवरपूल के अलावा न्यूकासल और एवर्टन लाइन में हैं। लिवरपूल मोनाको से मैग्नस अक्लियुचे के बारे में सोच रहा है। फ्रांस का इंटरनेशनल खिलाड़ी 24 साल का लामिन कमारा भी द रेड्स के रडार में है। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड अटलांटा से ब्राजीलियन मिडफील्डर एडेसन के पीछे है। कैसेमिरो के स्थान पर उसका हमवतन आ सकता है। 5 नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहते हैं द रेड डेविल्स। टेनिस इटालियन ओपन में इगा श्वाटेक ने नाओमी ओसाका को एलिमिनेट किया। होम फेवरेट यानिक सिनर भी आगे जा पाया अलेक्सी पोपेरिन को हराकर। कल रुबलेव, पेलिग्रिनो, मेडवेदेव, चिरांते, क्रिस्टिया, कोकोगोफ, ओस्तापेंको, अंद्रीवा, विटोलिना, पेगुला और रिबाकिना जीत पाए। आज मुसेती का मुकाबला कास्पर रूड से युदा चेन, दादेरी वेरेव, सीना खेलेगा पेलिग्रिनो के खिलाफ, कोकोगोफ अंद्रीवा ये क्वार्टर फाइनल है, सियस्टिया ओस्तापेंको ये भी क्वार्टर फाइनल। क्रिकेट में आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है। बैडमिंटन में टूर्नुआ इंटरनेशनल दू सेंट डेनी में हमारे खिलाड़ियों के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे। बेंजामिन, मिनिम, कैडेट, सीनियो और वेटरन कैटेगोरी थे। बुडन, सावराम, दूस, लिफाई, सियुइंग योंग, चेंगिया नंदा इरामन और विशाल सावाराम गोल्ड मेडल जीत पाए। और एथलेटिक्स में आज से यूनिवर्सिटी ऑफ गाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में अफ्रीकी चैंपियनशिप शुरू हो रहे हैं। वहीं पर फैसला लिया गया कि 2030 में ये प्रतियोगिता मॉरिशस में लगेगी। तो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, टोटनहम हॉटस्पर रिलेगेशन से अभी दूर नहीं भाग पा रहा है। कल केवल मैच ड्रॉ कर पाया 1-1 लीड्स के खिलाफ, मतलब अब 2 अंक ही है इन दो टीमों के बीच, यानी टोटनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम के बीच। और ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर रोड टू वर्ल्ड कप एक स्पेशल प्रोग्राम RM2 पर लेकर आ रहे हैं सुबह और शाम को। हमारा साथ देते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज वर्ल्ड कप के बारे में आपको देंगे। और खास खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, जो 11 जून से शुरू होने वाले हैं कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। सो गेट रेडी फॉर द एक्शन वर्ल्ड कप 2026।
3: ये RM2 पर हमेशा कोशिश की आपके लिए कुछ स्पेशल जरूर लेके आए, तो अपना कॉफी हो या फिर चाय का मग या फिर हो कप, चलिए बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड कप। देरी क्यों भाई,
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
6: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
6: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.

0: Road to World Cup 2026. The countdown is on. Kickoff June 11. Mexico City के Estadio Azteca में. Group A में है hosting Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic. Mexico the L3 के साथ बहुत expectations हैं. Manager Javier Aguirre preliminary selection बनाने लगा है. वेटरन खिलाड़ी Guillermo Ochoa training camp में आ गया है. उसके लिए रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप होगा. राइजिंग टैलेंट 17 ईयर ओल्ड Gilberto Bojo मेक्सिकोज वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे जवान खिलाड़ी होगा. वर्ल्ड कप से पहले 3 फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे. वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. The Bafana, first appearance in 16 years. अपने ग्रुप को टॉप करके क्वालिफाई हुए. 3 बार वर्ल्ड कप में भाग ले चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम. ग्रुप स्टेज तक ही रह पाई The Bafana टीम. साउथ कोरिया को The Tagwek Warriors नाम दिया जाता है. 11th वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन. मोस्ट सक्सेसफुल एशियन साइड. 2 बार नॉकआउट स्टेज में जा पाए हैं. 2002 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुए थे. 2018 में फाइनल ग्रुप मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को 2-0 से हराई थी ये टीम. नाम पे मत जाएं, मैदान में कोरिया नहीं अच्छे अच्छों को कोर के उखाड़ फेंकते हैं. सोन यून मिन, किम मिन जाई जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. फिर चेक रिपब्लिक, 2 बार रनर अप चेकोस्लोवाकिया के नाम पर 20 साल बाद वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहे हैं. की प्लेयर्स लादिस्लाव केस्चिच टीम कप्तान वुल्फ से, पैट्रिक चिक बायर लेवरकुसन का स्ट्राइकर, टोमास सुजेच वेस्ट हैम का खिलाड़ी. सो टीम ए में, ग्रुप ए में मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक. रोड टू वर्ल्ड कप. कीप ऑन लिसनिंग ऑन रेडियो मस्ती.
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates. JG

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: 8 बजे
7: आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखल जाला। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री के गैर हाजिरी में अगयान नावोमारी अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रधान प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देने बाद सन 2014 से 2024 ले एमरसस द्वारा बेचे या खरीदे गल हवाई जहाज पर सवाल करल जाला। एमरसस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज रामलगन याद दिलाई ले बा की राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत रहेला तब जहाज के संख्या 15 से 9 तक घटगल। कम दाम में जहाज के बेचल गल रहल जबकि रिपोर्ट में उच्च दाम के जिक्र करल गल रहल। मोरिस में पर्यावरण के लेके गोबरा कदम उठावल जाला। कैबिनेट के बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 के लागू करे के मंजूरी जतैलन। ई ढांचा के जरिए हवा के किस्म और कारखाना और इंसिनरेटर से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखल जाए सके बातें। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलत अधिकारी हल ढूंढे खातिर एगो मास्टर प्लान पर काम करेला। अगर बहुतों खातिर मेट्रो एगो तेज जरिया और कारगर परिवहन बाते लेकिन कैथोबोन के बाशिंदा लोग खातिर शहर में ही आने जाने खातिर ई प्रणाली मसला पैदा करता। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई गो कैबिनेट मंत्री में शामिल बाते जोन सर के एस थॉमस से उनकर इस्तीफे के मांग करेला जिकर कारण सरकार के उच्च अधिकारी में तनाव पैदा हो गल बाते। ते रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
8: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: You're listening to a Radio Masti.
1: चलिए वेलकम बैक और 8 बजकर 7 मिनट हुए 12th of May ट्यूसडे का दिन और जान लेते मौसम का हाल.
2: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रह कर बारिश होगी. खासतौर पर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा. आज रात घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में. इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है. तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा.
0: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti.
5: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners pour encore plus de bons moments autour de produits que vous aimez. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
6: On est tous Winners!
0: RM2
3: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: दोस्तों, सुबह सिर्फ सूरज की उगने से नहीं होती, सुबह तब होती है जब अंदर उम्मीद जगती है। कल अगर मुश्किल था तो याद रखो कि आज एक नया मौका है खुद को फिर से जीतने का, अपनी मंजिल पाने का। जिंदगी की रेस में जरूरी नहीं कि हर बार आप ही फर्स्ट आओ, जरूरी है कि आप रुकना ना सीखो, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। बारिश की बूंदें भी हमें यही सिखाती हैं, गिरना पड़ता है तभी जमीन महकती है। तो आज खुद से वादा करो, नेगेटिव लोगों से नहीं, नेगेटिव सोच से दूर रहोगे। मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि पिक्चर का बेस्ट सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
2: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
2: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
2: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: हर कोई बात करता है अबाउट टेक्नोलॉजी, हर कोई बात करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बात करने वाले हैं पोर्टेबल टीवी की, जो आप ले जा सकते हैं जहां पर भी जाएं, ये तो बताएंगे, लेकिन साथ में प्यार इश्क और मोहब्बत का इजहार भी AI स्टाइल में, यानी कि टेक्नोलॉजी।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जब थोड़ी देर में कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी भी, लेकिन अब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। ये भी सीन शुरू हो गया, नहीं भाई पप्पू गर्लफ्रेंड को बात करते करते इजी स्टाइल में भी आ गया। जब गर्लफ्रेंड पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो उसने कहा हाँ उतना ही प्यार करता हूँ जितना मेरा फ़ोन 1% बैटरी जब आती ना उसकी अपने चार्जर से करता है।
2: Welcome to Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti feels a musti.

0: कहते प्यार का कलर दिल पर चढ़ ही जाता है, नहीं ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो खाली दिल का हाल समझती है। कोई एआई कोई टेक्निक नहीं, बस दिल से दिल का मेल, बाकी सब उसके सामने फेल। और कुछ बोलोगे या फिर
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए साहब चलते हैं, हम सीधा पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज अबाउट पोर्टेबल टीवी। जी हाँ, टीवी की बात कर रहे हैं, बीवी को टीवी दिखा सकते हैं और वो भी पोर्टेबल। राइट, वैसे आपको पता है कि आजकल हर कोई अपनी टैबलेट ऐसी चीज़ें लेकर घूमता फिरता रहता है, लेकिन इन सब के बीच में आ गया पोर्टेबल टीवी। ये भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। एक्चुअली पोर्टेबल टीवी लोगों को बड़े और बेहतर टीवी वाली धारणा से बदलने के लिए कहते हैं। जिस तरह से आप अपने फ़ोन या टैबलेट को साथ लेकर चलते हैं, उसी तरह टीवी भी हैं जो साथ चल पड़ते हैं। अच्छी बात है ना। अब कई लोग हैं जो घूमना फिरना चाहते हैं लेकिन साथ में अपने फेवरेट सीरीज़ या टेलीविजन प्रोग्राम्स ये सब देखना चाहते हैं। वैसे 32 इंचेस से थोड़े कम ही आते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स उनको बना रहे हैं। फिर चाहे व्हील्स वाले स्टैंड हो या ब्रीफकेस जैसा डिज़ाइन हो, सब कुछ है इसमें उपलब्ध। पोर्टेबल टीवी की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें इनबिल्ट बैटरी होती है, तो ये तारों की झंझट बिल्कुल ख़त्म। 8 से 11 घंटे का बैकअप, इसका मतलब है कि पोर्टेबल टीवी भाई बिजली के तारों से आपको छुटकारा दिलाती है। और कुछ टच स्क्रीन मॉडल्स आते हैं, रोटेशन फीचर भी इसमें आता है। अब आप अपने गार्डन में आराम से बैठकर कोई मैच फॉलो कर रहे हैं या फिर किचन में रेसिपी, अरे ये तो टैबलेट भी करता है ना। हाँ करता है, लेकिन टीवी प्रोग्राम्स। और वहीं पर अगर इसमें आप वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस जोड़ दें तो ये तो डेस्कटॉप पीसी बन जाता है। ऑफिस जाने वालों के लिए ये सेकेंडरी मॉनिटर का काम भी कर सकता है, तो चॉइस आपकी है। बहुत सारे अब लोग हैं जो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स के माने तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही बात, लेकिन बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत है तो लोग टैबलेट या लैपटॉप की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन पोर्टेबल टीवी बढ़िया है ना, कहीं भी लेकर घूमो। हाँ, फेवरेट सीरियल्स या कभी भी मौका मिले आराम से, एनी टाइम योर टाइम।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, मॉर्निंग बीट RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: चक दे।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: भाई दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाने के बाद अब आदित्य हर की जो फिल्म है धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज अब जल्द ही OTT पर दस्तक देने वाली है। नॉक नॉक, लुक एट द क्लॉक, भाई 8:44 होने वाले हैं। नीलमणी आ चुके थोड़ी देर में आपको साथ देने के लिए। हाँ, तो धुरंधर की बात कर रहे थे तो घर बैठकर काफ़ी लोग ऐसी मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़। वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन हुआ ये कि एक मामला पहुँच गया कोर्ट और वहाँ पर पता चल गया कुछ। भाई त्रिदेव के गाने तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी तो बना दे भाई, इसको बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया, ये है कहना लोगों का। और उसके बाद पहुंच गए जी कोर्ट में, केस चला गया और वहीं पर सुनने में आ रहा है कि अब हो सकता है कि इसके ऊपर कार्रवाई तो होगी होगी, लेकिन साथ साथ में OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये रिलीज हो सकती है। तो जो लोग घर पर बैठ कर इसका आनंद लेना चाहते हैं वो बिल्कुल तैयार हो सकते हैं इसके साथ। और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जहाँ पर नेटफ्लिक्स पर पहली आई थी मूवी, अभी दूसरी वाली आ सकती है डिज्नी पे, चलिए देखते हैं, या फिर जियो हॉटस्टार, चलिए देखते हैं, आपको बताएंगे। जो भी है, हम तो ये कहें कि मूवीज चलती रहें, आपकी नॉर्मल जिंदगी बदलते रहें, और यही है ज़रूरी, कुछ अलग हमेशा। मैजिकल RM2।
4: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
5: Radio Musti feels a musti.

0: बस सुबह होते ही हर कोई अपनी जर्नी अपना सफर शुरुआत करता है और उसके बाद जाने कब किससे कैसे मुलाकात हो जाए। दो अजनबी कभी कभी बन जाते हैं दूसरे की जिंदगी और कभी लगता है कि जैसे म्यूजिक के बिना तो गवारा ही नहीं है ना। Right, ladies and gentlemen, थोड़ी देर में निर्मली लेकर आने वाली है योर मस्त मॉर्निंग शो
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: सुबह सुबह सही मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आपके कॉफ़ी मेक अंदर कॉफ़ी कितनी है, दूध कितना है, चीनी कितनी है उसका मिक्स हो, या फिर रेडियो पर पुराने नए गानों का मिक्स। अरे देखो देखो देखो

0: समाचारों को लेकर सुमेरा आ चुकी है। सुमेरा, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार राधा। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जाएंगे। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की गैर हाजिरी में अगिया नवोमा की अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान जवाब देंगी। सन 2014 से 2024 तक एमरेट्स द्वारा बेचे या खरीदे गए हवाई जहाजों पर सवाल जवाब होगा। एमरेट्स के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राजा राम लगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब जहाजों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाजों को बेचा गया था, जबकि एक रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया। इनसे बड़े नुकसान हुए। राजराम लगन क्रोल जांच के बारे में भी पूछताछ करने की मांग करते हैं। राष्ट्रसभा में ही मॉरिशस और चीन के व्यापारिक संबंधों

0: सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली के दाम में बढ़ोतरी, स्पोर्ट्स में शासन की बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विदेशी कामगारों पर बहसें की जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल पूछे जाएंगे, खासतौर पर बुबासा कैद खाने में दो कैदियों की मौत के सिलसिले में। मुशरस में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाए जाने वाला है। कैबिनेट की बैठक में नए एनवायरनमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू करने पर मंजूरी जताई गई। इस ढांचे के जरिए हवा की किस्म और कारखानों एवं इंसिनरेटरों से प्रदूषित उत्सर्जन पर काबू रखा जा सकेगा। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, लेकिन कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के वास्ते ये प्रणाली मसला पैदा कर रही है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथोबोन के मेयर रुदी ब्रायन केनु का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। क्या मीडिया के लिए मुशरस में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इस हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व डीपीपी वकील सत्यजीत बुलेर ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील बुलेर ने सन 2013 में जुरिस्ट ज्योफ्रे रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आजाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाना। इसके जरिए न सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आजादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। और विदेश की खबरों में ग्रेट ब्रिटेन में गृह सचिव शबाना महमूद उन कई कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं जो सर केयर स्टार्मर से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के उच्च अधिकारियों में तनाव पैदा हो गए हैं। ये समझा जा रहा है कि कैबिनेट में महमूद उन लोगों की माइनॉरिटी में है जो चाहते हैं कि सर केयर अपने पद छोड़ने का टाइम टेबल दे। आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई जाने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार राधा।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, आज है ट्यूसडे 12th ऑफ मे और आप कनेक्टेड है आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ। मस्ती मॉर्निंग के पहले आओ में होगा हॉरोस्कोप और टिप्स टू मेक श्योर कि आप यही पर आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही कनेक्टेड रहे। तो साथ में लेट्स वाइब टुगेदर टू मेक दिस ट्यूसडे अ गुड वन।
1: आरएम2 रेडियो मस्ती,
0: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: यस 9:17 मिनट हो चला है। 12 मई को हम मना रहे हैं कुछ खास दिन, जैसे कि विकास ने कहा इट्स इंटरनेशनल नर्सेज डे। साथ ही साथ आज है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ह्यूमंस के हेल्थ को चेक करने के लिए हमारे पास नर्सेज है और प्लांट्स पौधों के लिए हम इंसान। तो अगर आप नेचर लवर हैं और आपके यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, जो लुक आफ्टर दैम, ख्याल रखें उनका, क्योंकि आज टाइम है उन पर चेक करने का। उसे कुछ ही देर में ला रहे हैं आपका राशिफल, तो जुड़े रहिए यही RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
3: You're listening to Radio Masti.

0: गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज और स्टार्स का मैजिक लेकर आ रहे हैं विद आज का हॉरोस्कोप। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्त, देखते हैं आज किसकी लाइफ में रोमांस, पैसा या ड्रामा का तड़का लगने वाला है।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
2: एरीज, मेष राशि,
0: आज एनर्जी फुल ऑन रहेगी, काम जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखे दोस्त। लव लाइफ में सरप्राइज मिल सकता है। लकी कलर आज का आपका है रेड और नंबर है 9।

0: टॉरस वृषभ राशि, आज कंफर्ट और खाना दोनों आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियली गुड न्यूज मिल सकता है। लकी कल आपका है क्रीम और नंबर आपका है 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आपका मूड आज रेडियो की प्लेलिस्ट की तरह चेंज होगा। नए लोगों से कनेक्शन बनने वाला है। लकी कलर है येलो और नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: इमोशनल मत होना छोटी छोटी चीजों पर। फैमिली का सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा। लकी कलर आज का है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: रोज की तरह आज स्पॉटलाइट आप पर ही होगी। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बस आपको एटीट्यूड को कट करना है थोड़ा सा। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: ऑर्गेनाइज्ड रहने का फायदा मिलने वाला है आज। हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लकी कलर है ग्रीन और नंबर है 4।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: बैलेंस बना के रखो बॉस। आज किसी से स्वीट कॉन्वर्सेशन करके आपके मूड को बेहतर बन सकता है। लकी कलर है पिंक और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग है। जो फील हो रहा है उसे इग्नोर ना करें। लकी कलर है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: ट्रेवल या आउटिंग का मूड बन सकता है आज। फन एनर्जी भी हाई रहेगी। लकी कलर है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: परिश्रम का रिजल्ट्स मिलने वाला है। बॉस या आपके एल्डर्स इम्प्रेस्ड हो सकते हैं। लकी कलर है ब्राउन और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: क्रिएटिव आइडियाज आज आपके दिमाग में नॉन स्टॉप आने वाले हैं। सोशल मीडिया या नेटवर्किंग भी लकी रहेगा आपके लिए। लकी कलर है ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: दिल की सुनो लेकिन प्रैक्टिकल भी रहो। म्यूजिक और पीसफुल वाइब्स आज आपकी मूड को हील करेंगे। लकी कलर है समुद्री हरा और नंबर है 12।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अरे यस मॉर्निंग में फोन नहीं, पानी का ग्लास पकड़ना चाहिए। उठते ही एक ग्लास पानी आपको पी लेनी चाहिए। अगर अभी आप ड्राइव करते करते थक गए हो या फिर ऑफिस के पार्किंग में लंबी सांसें ले रहे हो, जो हाइड्रेट योरसेल्फ मेरे दोस्त, इससे बॉडी और ब्रेन दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं। रेस्ट आप हम पर छोड़ दीजिए, गानों से आपके मूड को ठीक करते रहेंगे। आप बस मजा लीजिए प्रेजेंट मोमेंट का अपने ही आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ। You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti
1: Hit Music Only
2: Radio Musti Feels a Musti.
3: Yes, it's 9:53 और आप कनेक्टेड है RM2 रेडियो मस्ती के साथ. पहला आवर ऑलमोस्ट डाउन. एंड अभी के लिए टिप है कि हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है, पीस भी ज़रूरी है यार. तो अपना देखो और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं. अभी के लिए एंजॉय करते हैं इस अमेजिंग गुड म्यूज़िक को.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार।
1: नमस्कार और आदाब। कल केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नैरोबी के स्टेट हाउस में एक राष्ट्र बैंक्वेट का आयोजन किया। राष्ट्र एवं सरकारी नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल थे। नेताओं के अलावा सादेक इलाके के प्रतिनिधियों ने भी इस मौके पर अफ्रीका फॉरवर्ड समिट के पहले संस्करण में भाग लिया। अफ्रीका और फ्रांस के बीच टिकाव साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा समृद्धि बांटने, नवीनीकरण, व्यापार, निवेश और टिकाऊ विकास पर बल दिया जा रहा है। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मुर्शिद टेलीकॉम ने माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके तहत नौजवानों को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माँ बाप की बढ़ती चिंताएं दूर करने का उद्देश्य रखती है। क्या मीडिया के लिए मुर्शिद में एक ओम्बुड्स पर्सन होना चाहिए? इसी हफ्ते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और पूर्व DPP वकील सत्यजीत बुल्ले ने फ्रीडम ऑफ प्रेस वैश्विक सप्ताह के संदर्भ में पत्रकारों के लिए मीडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान फिर से ये मुद्दा उठाया। वकील बुले ने सन 2013 में जुरिस्ट जेफ्री रॉबर्टसन की मीडिया लॉ एंड एथिक्स इन मॉरिशस नामी प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश का हवाला दिया। इस दस्तावेज में एक आज़ाद मीडिया ओम्बुड्स पर्सन की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी जनता की शिकायतें लेना, गलतियों में सुधार लाना और जर्नलिज्म पेशे को बाकायदगी से निभाना। इसके जरिए न सिर्फ मीडिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि उनकी आज़ादी की हिफाजत करते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज़ जरिया और कारगर परिवहन है, कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के वास्ते ये प्रणाली मसला पैदा करती है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन जाती है। कैथोबोन के मेयर गुदी बायन केनू का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। विदेश में यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों ने कल इसराइलियों के लिए नई पाबंदियों पर सहमति जताई, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइलियों के हमलों में काफ़ी तेज़ी आई। EU के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कदम उठाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्लेबोआ स्ट्रीट मेबर्ग में 80 साल की 80 years old मोहतरमा राबिया नासुराली, राबिया नासुराली जो राबिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनकी रिश्तेदार आंसू हाइडू के घर प्लेबोआ स्ट्रीट मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए जुमा मस्जिद मेबर्ग और फिर दफनाने के लिए पॉइंट बोकुस रिविया दे क्रेओल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हम हमदर्दी हैं।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग. दूसरे आवो में भी हमने एंट्री मार लिया है. फिर से स्वागत करती हैं आपका. इट्स योर मस्ती मॉर्निंग. 12 बजे तक टिप्स और बीटाउन की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप बस यही आरएम2 रेडियो मस्ती से जुड़े रहिए एंड कीप स्माइलिंग.
1: आरएम2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स. रेडियो

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एंड यस, सभी के लिए चलते हैं बी टाउन की दुनिया में। आज हमारे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के लिए भी बहुत स्पेशल दिन है दोस्तों। आज उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ सेलिब्रेट हो रहा है उनकी डेब्यू फिल्म इश्क ज़ादे का भी एनिवर्सरी। एंड वैसे परेशान गाना भी उसी अमेजिंग मूवी का से है। आशा है कि आप म्यूजिक को एंजॉय कर पा रहे हैं। 12 बजे तक ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग गाने लाते रहेंगे। आप बस स्माइल करते रहो एंड लीव द रेस्ट ऑन योर आरएम2 रेडियो मस्ती।
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: just love me.
1: RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: एंड यस इट्स टाइम फॉर आज का फैशन लुक जो कि है एफर्टलेसली शिक, मतलब ज्यादा ट्राई भी नहीं करना है और फिर भी सब बोलेंगे वाह। टिप है अपने कलर गेम को स्ट्रॉन्ग रखना, यानी कि अर्ली टोन से जैसे कि ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, मोचा या फिर सॉफ्ट पिंक आज फुल ट्रेंड में है। कैजुअल शीक लुक, बैगी जीन्स, क्रॉप टी शर्ट, स्नीकर्स कंफर्टेबल भी है, ट्रेंडिंग भी। मोनोक्रोम आउटफिट्स के लिए ऑफिस स्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं। सेम कलर फैमिली का आउटफिट इंस्टेंटली आपको रिच और पॉलिश्ड लुक देता है। एक्सेसरीज भी मैटर करती है, सिंपल आउटफिट हो तो चंकी इयररिंग्स या फिर स्टाइलिश वॉच आप ऐड कर सकते हो, उससे क्या होता है पूरा वाइब एलिवेट हो जाता है। एंड आजकल ट्रेंड भी है वाइट स्नीकर्स का और हील्स का भी, तो फैशन रिमाइंडर आपके लिए है कि कपड़े सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस को भी ड्रेस करते हैं। सो वेयर योर स्माइल लाइक योर बेस्ट एक्सेसरी।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दूसरा आवर भी जा रहा है डाउन, तो भी के लिए अनदर टिप है, ये वाला पर्सनल है। स्पीक काइंडली टू योरसेल्फ। आप खुद से जो बातें करते हो वही से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। तो चलिए नेक्स्ट आवर में मिलते हैं एंड अभी के लिए आखिरी गाने को एंजॉय करते हैं एक बार फिर आरएम टू रेडियो मस्ती पर।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा। नमस्कार।
4: नमस्कार आदाब। आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता जुली जोंगा का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित रहेगा। संक्रामक बीमारियों के संदर्भ में आज की तारीख तक दर्ज मामलों, मौतों, उठाए गए कदमों, दवाओं, डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगया नवामाही से सवाल किया जाएगा और आज ही के एजेंडा में नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को दूसरी पढ़त पर पेश किया जाएगा। आज राष्ट्रसभा के कार्य 11:30 बजे से शुरू किए जाएंगे। एमोरस के पूर्व श्रमिक संघ सदस्य राज राम लगन ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी जब वॉलंटरी शासन के तहत थी तब विमानों की संख्या 15 से 9 तक घटाई गई थी। कम दामों में जहाज़ों को बेचा गया था जबकि रिपोर्ट में उच्च दामों का जिक्र किया गया था। इनसे बड़े नुकसान भी हुए। राज राम लगन क्रोल जाँच के बारे में भी पूछ रहे हैं। कैथोबोन में बढ़ते ट्रैफिक जाम के चलते अधिकारी हल ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम करने का इरादा रखते हैं। अगर बहुतों के लिए मेट्रो एक तेज जरिया और कारगर परिवहन है, कैथोबोन के बाशिंदों के लिए शहर में ही आने जाने के लिए ये प्रणाली मसला पैदा कर रही है। पीक वक्त पर ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर एक इमरजेंसी हो तो ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण भी बन जाती है। कैथोबोन के मेयर ओदी पायन केनू का कहना है कि इस हालत में सुधार लाने पर गौर किया जा रहा है। विदेश में आसाम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार के उम्मीदवार लगातार दूसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक बड़ी भीड़ की मौजूदगी में हिमांता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्लेबुआ स्ट्रीट में बग में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड मोहतरमा राबियाना सुराली, राबियाना सुराली जो राबिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 11 बजे इनकी रिश्तेदार आंसू हाइडू के घर प्लेबुआ स्ट्रीट में बग से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए जुम्मा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनोरा

0: 11 AM. Royal Road Bus du Flak में 75 साल के 75 years old श्री नरेंद्र सोनाराम जो विनोद के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Musty Morning Show. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Good morning. 9 बजे से नमनी आपके साथ में है मस्ती मॉर्निंग में. अभी आखिरी आवर में ही पहुंच गए हैं. आखिरी आवर जहां पर आपके लिए होंगे टिप्स, बीट डाउन की खबरें और गुड म्यूजिक. तो चलिए फिर से वापस चलते हैं टू एंजॉय द गुड वाइब्स दैट्स हैपनिंग राइट नाउ आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बहन का तो पता नहीं, लेकिन नवी के लिए है क्विक लाइफ स्टाइल रिमाइंडर आपके लिए। आई नो सुबह को बहुत से लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और बस कॉफ़ी या चाय पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप डोंट स्किप ब्रेकफास्ट एंड सर्वाइव ओन कॉफ़ी यार। इससे एनर्जी लो हो जाती है और फिर मूड भी वाईफाई सिग्नल की तरह वीक हो जाता है। आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाइए। अगर अभी तक कुछ नहीं खाया है, अभी जाके कुछ खा लो। बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी, बस भूख के पेट ना रहो। माइंड के लिए तो खाना रेडी है, हियर वी गो।
1: यू आर लिस्टनिंग टू मस्ती मॉर्निंग्स।
3: मस्त मॉर्निंग शो,
1: स्टे ट्यून्ड, स्टे मस्ती। रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Good vibes, great music और थोड़ा सा Bollywood spice. Live today as if खुद की movie हो यार. Make it dramatic, emotional. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसको unforgettable बनाओ. तो इसी के साथ इस टाइम फॉर मी Nilmani टू साइन ऑफ. होप यू हैड अ ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग. आफ्टरनून को अमेजिंग बनाने के लिए गिनिश आ रही है रेट्रो रिदम के साथ. तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्द ही. टेक केयर, बाय बाय.
1: RM2 Radio Musty in the mix. Radio.

0: South
1: 103.5,
0: East West
1: 96.4,
0: Center
1: 99.4,
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: वेलकम चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12:09 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. आज है ट्यूजडे 12 मई 2024. बड़े प्यार से हम आए हैं खूबसूरत गाने तराने लेकर फिर से एक बार इस खूबसूरत से सफर में आपका हम सफर बनने के लिए. टू ऑल दोस हैविंग देयर लंच, बोन अपेटाइट टू यू माय डियर लवली लिसनर्स. हाँ जी, यम्मी यम्मी खाना खाते खाते अच्छे अच्छे गाने जब सुनते हैं तो मन काफी प्रसन्न हो जाते हैं ना. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी गिनिशा ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती शेड दिन के 2 बजे तक. अगेन आई विल बी हियर विद सम रेट्रो सॉन्ग्स. खींच के लेके जाएंगे फिर से एक बार उन यादों में ही, जहाँ पे आप मुस्कुराते भी थे और खुश भी हुआ करते थे. तो चलिए मुस्कुराने के लिए फिर से तैयार हो जाइए और शेयर विद मी योर डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 599 12 94.

0: Retro Rhythm.
1: खूबसूरत गाने तराने स्पेशली आपके लिए हम लेकर आए हैं दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रेट्रो रिदम। 12:23 हो चुके हैं, टाइम बीता चला जा रहा है लेकिन खूबसूरत यादें फिर से ताज़ा हो रही है ना। अरे गुस्ताखी माफ़ मेरी जान आपकी यादों को छेड़ने के लिए, लेकिन क्या करे कम वक्त है। खूबसूरत यादें जब इंसान याद करते हैं तो उसमें दोबारा डूब जाते हैं और फिर से उन यादों को जीने की तमन्ना फिर से आ जाती है। तो चलिए जी, आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लगा जो भी हम लेकर आए के लिए, कुछ आपके पसंद के और कुछ हमारे पसंद के। फिलहाल के लिए I've got your dedications on 5499-1094 पर, और चलिए जी let's check it out, साथ में किसने किसको याद किया है। और ये अगला गाना जो है अब्दुल एंड सहरा बानो जी के नाम जो साथ दे रहे हैं, हाँ जी। और ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू संगर जो है फ्रांस

0: दे रहे हैं एंड आई हैव अगला गाना स्पेशली टू ऑल दोज जो अभी फ्रांस की तरफ हाँ जी सात समुंदर पार से हमारा साथ दे रहे, लगता है कि बहुत सारे लोग हैं एंड वी हैव अ प्यारी आंटी लविंग माय आंटी हे आंटी द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड टू एवरीवन वर्किंग एट चॉइस फूड स्नैक एट सेंट पॉल सो चॉइस फूड के जितने भी स्टाफ हैं बिग किसेस टू यू एंड कुराज टू यू एंड बोन अपेटी टू ऑल देयर लवली लवली जो क्लाइंट वहाँ पे है एंड वीना फ्रॉम नुवेल फ्रांस द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड आपके हस्बैंड देव तो चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया नाइस सिलेक्शन आंटी थैंक यू माय बेटा याले शाम फ्रॉम सुरिनाम ये अगला गाना फॉर यू माय डियर साधना फ्रॉम रिविया डे क्रियोल एक गीत की फरमाइश ऑफ कोर्स आपके पूरे जीवन परिवार के लिए तो चलिए जी फिलहाल के लिए खेले के जाएंगे आपको 1974 में जहाँ पे आशा भोसले जी और किशोरदा की आवाजों में ये खूबसूरत सा गाना हम लेकर आए हैं। Here we go, let's all enjoy it.
1: You're listening to

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, यही तो हम चाहते हैं कि आप उन दिनों को याद करो जहां पे आपके दिल जो है ना काफी खुश हुआ करते थे। आपकी जो यादें हैं ना काफी प्रेशियस हैं, क्योंकि ये वो यादें, वो वक्त है जो आपने किसी के अपने के साथ, किसी खास के साथ बिताया होगा। और आज जब बैठ के उन्हें ये गीतों, उन्हें ये तराने को आप सुनते हो और बस उनको याद करते हो, तो बहुत सारी यादें जब ताज़ा हो जाते हैं तो इंसान का दिल काफी खुश हो जाता है। फिलहाल के लिए चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर 1 रेडियो स्टेशन एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम, जहां पे गिनेशा खींच के लेके जा रहे हैं आपको उन गलियों में जहां पे शायद आप दोबारा वापस लौट के बड़े टाइम से नहीं गए हो। तो चलिए जी, ये चलिए जी, साधना जी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम रिविया डे क्रियोल, अगला गाना स्पेशली आपके लिए, आपकी फैमिली जीतन के जीवन के लिए। और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू सुरेखा जी फ्रॉम कैथ कुकू। सो सुरेखा रामदन बोलते हैं गाना आपकी ननद के लिए, आज उनका जन्मदिन है, तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट। तो ये अगला गाना खासकर उनके नाम, एंड वी हैव सुनीता लुलचान फ्रॉम मिलान। हे थैंक यू सो मच, सात समंदर पार से इटली से आप हमारा साथ दे रहे हो। और आज अविशा और प्रतिज्ञा का बर्थडे है, सो दोनों को हैप्पी बर्थडे, डबल सेलिब्रेशन आपके घर पे, एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम लुलचान परिवार एंड पराहत परिवार की तरफ से। हार्दिक शुभकामनाएं उन दोनों को, एंड बेस्ट बेस्ट बर्थडे वाला गाना हाँ जरूर चलाएंगे उन दोनों के लिए। हियर वी गो।

0: from Radio Musti.
1: Wishing you loads of happiness, my dear, and best wishes, especially हमारे पूरे टीम की तरफ से, and to all those who are celebrating their birthdays, happy birthday to you. और चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम सुया के लिए, सुया बिहारी ऑफ कंगोमा के लिए भी ये डेडिकेट करना चाहेंगे, जो साथ दे रही है ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती. एंड वेल, हम तो बिल्कुल ठीक है, एक गाना हो जाए हमारे बेटियों के लिए, स्वीट मीठी मीठी बेटियाँ जिनका नाम है मिश्ती. सो मीठी मिश्ती के लिए हिमाक्षी और हस्बैंड आशीष के लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम रेशमा ऑफ सोलफेरिनो. थैंक यू सो मच माई ब्यूटिफुल एंड लवली पीपल ऑफ देयर, जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती. और फिलहाल के लिए जरा अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि लेके जाएंगे 1998 की गलियों में, एंड दिस वन गोज आउट स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 PM.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4,
2: सेंटर
3: 99.4.
1: RM2
3: रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Masti. Feel the Masti.
1: आइए सुनते हैं समाचार गीता के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार गिनीश्रा, सभी को हमारा नमस्कार। चिकनगुनिया, डेंगी, लेप्सोस्पायरोसिस और मंकी पॉक्स के मामले मॉरिशस में दर्ज संक्रामक रोगों के प्रकोपों में शामिल हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज सुबह संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष नेता जोले जोंगा द्वारा पूछे गए प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में दी। मंत्री के अनुसार चिकनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। अन्य सभी मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर दिया गया है। इसके अलावा 5 मामले विदेश से दर्ज किए गए हैं। डेंगू के संबंध में 1 स्थानीय और 6 विदेशी मामले सामने आए हैं। सभी मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। लेप्टोस्पायरोसिस के 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में बीमारी के गंभीर लक्षण थे और वे अन्य रोगों से भी पीड़ित थे। एक मामले में मरीज की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जब लेप्टोस्पायरोसिस का मामला पता चला। एम्पॉक्स के 2 विदेशी मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 1 मॉरिशस निवासी शामिल था। दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उनके संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला है। मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि इन बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, पुलिस तथा चूहा नियंत्रण सेवाओं के बीच सहयोग के साथ स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत किया गया है। 2025 में ना तो कोई मुद्रा छिपाई गई है और ना ही सरकार को कोई धन हस्तांतरित किया गया है। ये बात मॉरिशस बैंक ने आज सुबह जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही है। केंद्रीय बैंक ने इस तरह पूर्व वित्त मंत्री हंगनादेन पदयाची के बयानों का जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर कल प्रसारित एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार ने 2025 में 83 बिलियन रुपये छापे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। अपने बयान में मॉरिशस बैंक ने सोशल मीडिया और कुछ समाचार लेखों में फैल रही झूठी जानकारी की निंदा की। संस्था ने ये भी स्पष्ट किया कि मुद्रा स्थिति से संबंधित जानकारी उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित कई आधिकारिक दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में आज अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण दिन है, जहां उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति, अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के अगले दिन आज चर्चा ठोस प्रतिबद्धताओं और अफ्रीकी फ्रांस साझेदारी के एक नए मॉडल पर केंद्रित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य महाद्वीप के आर्थिक और सहयोग संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाना है। कल नैरोबी विश्वविद्यालय में आयोजित व्यापार मंच में 2000 से ज्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए, जो व्यावसायिक परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और महाद्वीप में आर्थिक आदान प्रदान को मजबूत करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस अवसर पर मॉरिशस के जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने एक गोलमेज चर्चा की अध्यक्षता की, जो मॉरिशस में व्यापार सुगमता और देश में उपलब्ध निवेश अवसरों पर केंद्रित थी। और विदेश में यूके में इन दिनों 70 से ज्यादा लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है। ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के अंदर बढ़ता नेतृत्व संकट और गहरा गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड से चैमिल थ्रियोले में 55 साल

0: के 55-year-old केशरी यशराज चंबित, जो आकाश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर बाद के 3:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड पोस्टफ्लैग में 75 साल के 75-year-old के श्री नवींद्रा सोनाराम, जो विनोद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti. Radio Musti.

0: आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में कचरा मोहब्बत वाला आए हाय मेरी जान मैं तो मर जावा गिर खा के
1: रेट्रो रिदम।
0: ऐसे गाने जब हम सुनते हैं ना तो वाकई दिल जो है वाकई में बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर दैट्स द सेम थिंग फॉर यू, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं, वैसे पुराने गाने की बात ही कुछ अलग होती है मेरी जान, बड़े मीनिंगफुल होते हैं एंड कुछ ना कुछ जरूर याद दिला देते हैं। सो चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 1:12 हो चुके हैं। वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड लवली शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम हैपनिंग राइट नाउ आपके और हमारे बीच में ऑन आवर टाइम टू रेडियो मस्ती एंड द मस्ती इज हैपनिंग एक्चुअली ऑन टिकटॉक आवर टाइम टू रेडियो मस्ती। तो चलिए द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक, ज्वाइन अस राइट नाउ राइट अवे एंड एंजॉय कीजिए द एंटायर शो। अगला गाना जो हम पेश करने वाले हैं आई एम वेरी श्योर कि आपको हम मजबूर कर देंगे कि थोड़ा आप भी नाचे हमारे साथ, है ना मिस्टर संगर फ्रॉम फ्रांस। बोलते हैं इतने अच्छे अच्छे सुविनियर्स याद आ रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच। एंड ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू माई ब्यूटिफुल हेमा, हे दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्लैक साड़ी यू आर वेयरिंग, सो दिस वन गोज आउट टू यू शीला फ्रॉम लेस्पेरेंस ट्रेबुशे। ये अगला गाना आपके लिए भी हम जरूर चलाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं दैट यू गोना लव इट। गुड आफ्टरनून सरोजी, मनिका, कौशल, राजन, पूनम, दिनेशा एंड विशाखा ऑफ कैथरबोन। तो चलिए हियर यू एंजॉयिंग द सिलेक्शन ऑन रेडियो मस्ती और सेंडिंग मी सो मच लव, थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट पूनम डिनी मोहन फ्रॉम गाना, हे माय ब्यूटीफुल कजिन, शी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय प्रीटी लेडी। एंड गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, स्वीट स्वीट गाने प्ले कर रहे हो। हाँ जी, हैप्पी थर्सडे, हैप्पी ट्यूजडे, अच्छा आपने टच दे लिखा है, हैप्पी ट्यूजडे सभी को एंड सभी मस्ती टीम को। थैंक यू सो मच अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लैक जो एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत गाने को ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। तो चलिए वीना फ्रॉम कार्ड्स मिली, कैसे

से हो आप, प्रणाम आपको भी, एंड आपके लिए बिल्कुल नजर के सामने जिगर के पास कोशिश करेंगे टू प्ले दैट इन अ वाइल फॉर यू, और शुभ दिन आपको भी। सो सारे म्यूजिक लवर्स जस्ट बी रेडी टू एंजॉय द नेक्स्ट वन ऑन 549 9194 पर। कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस।

0: RM2 Radio Musti
1: Hit music only
2: Radio Musti feels a musti
3: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का यह सिलसिला चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली लविंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग, कुछ हमारे पसंद के और ये हैं आपके पसंद के। थैंक यू सो मच। और ये गाना जाता है खासकर हमारे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती ऑन टिकटॉक।

0: रेट्रो रिदम
1: बादल यूं गरजता है थी। जी हाँ, टेकन फ्रॉम द मूवी बेटा, अब जो आपके लिए हम खास पेश कर रहे हैं ऑन आरएमटी रेडियो में से। एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ आवर सन्नी पाजी एंड अमरिता सिंह। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा मूवी था। एंड एक्चुअली जब ऐसे गाने हम लेकर आते हैं ना, तो जब मेमोरीज भी हम खींच के लेके आते हैं, तो ये जो प्यारी सी मुस्कुराहट आपकी होंठों पर आ जाती है, इसी वजह से हमारा दिल खुश होता है। एंड दिस इज व्हाई वी आर हियर, जस्ट टू ब्रिंग द स्माइल ऑन योर फेस। 5499129459 94 et oui, that's the number jahan pe hum intezar kar rahe hain aapke dil ki baaton ka, yani ki your dedications. Just send it to me on 5491294 and here we go, the next one. I just want to dedicate it for you jo bambu se thaneshwar ji saath de rahe hain, unki pyari patni sunita ke saath behan rani aur devdev san kaule sa parivar ke liye bhi hum dedicate karna chahenge. Thank you so much anusha and she's from sizia milla for a side beautiful song mere husband vimal ke liye, meri beti pari and friend punam and chacha anil and boss Rishi working at supermarket right now. So courage to you guys and hamare team ke liye. Thank you so much, my beautiful. And here we go. Aaj sister-in-law Usha Lesua Sebastopol ka birthday hai. So wishing her happy birthday to you and best wishes. But pati Amit Chan, beta Kushal and Kavish and Drishti and Reha, and we have Sichan Parivar ki taraf se lots of love and happiness to you. Sita Gita Baloramji from Chateau Benares. Kaise ho aap? Ye agla gana aapke naam. And Kishore da ka gana play karne ke liye Kamal Deep ne bola hai. Thank you so much and thank you. You are listening to your number one radio station, my sweetheart. And here we go. We do have Ashni, Rekha, Surekha and Moda Parivar and Jyoti Ji Chateau Benares se saath de rahe hain. Kaise ho my Ginu, my Jaan? Main bilkul theek hoon, meri Jaane Mandahan. Shweta Ravish, Prusha Lavesha, Apadu families from Roshnor. To chaliye ji, without wasting no time, ye agla gana hum dedicate karna chahenge tamam sunne walon ke naam se saath de rahe hain. Jaise ki from Italy we have Kavito Bai and we have Hima Aslam, Sunita, Sweetie and Jaya Chakuri, Ash, for your lovely husband ke liye jinko aap bahut ज़्यादा मिस कर रही हैं। All these people are watching us live on TikTok, RMT Radio Mastee. अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, do it right now, right away. TikTok, RMT Radio Mastee, right now.

0: बिल्कुल जी, कब कली खिली बहार की ये नादान है वो क्या जाने, क्योंकि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, बस हो जाता है। ना पूछ के करते हैं, ना इजाजत लेके हम प्यार करते हैं, जब होना होता है तो बस हो जाता है। सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वी आर हियर टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस आपके साथ ऑन ऑल राइट रेडियो मसीह। चेकियो टाइम 1:40 हो चुकी है।
1: रेट्रो रिदम।
0: Well guys, I really hope you're loving and enjoying these beautiful and lovely गाने जो especially आपके लिए हम लेकर आए हैं in your retro rhythm. Rose 12 बजे से लेकर 2 बजे तक in on RM2 Radio Masti. वैसे इस खूबसूरत से segment में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं on TikTok RM2 Radio Masti. Thank you so much. And चलिए जी, I just want to dedicate the next one for Yeshua. So the next one goes out for Davina from London. She's watching us right now. Aarti and चलिए जी, we do have Neha Kalpanata बोलते हैं अगला गाना उनके husband Vishal के लिए। लक्ष्य जो हैं बोलते हैं खूबसूरत गाना हो जाए घुंघट मूवी से, कोशिश करेंगे। Hi Sonam and ये अगला गाना फॉर यू माय डियर एंड ब्रायन नाइगम फ्रॉम जॉन क्लोड। अश्विनी हे हाउ आर यू, ये अगला गाना फॉर यू एंड विश्वनाथ जी। सो द नेक्स्ट वन स्पेशली आपके लिए। और विश्वनाथ पर रियाग बोलते हैं, फर्स्ट टाइम आई एम हियर ऑन योर शो एंड आई गेस यू आर लविंग इट एंड आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द शो। सो प्रीति डी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय ब्यूटीफुल लेडी। एंड वी डू हैव शिक्षा प्रीतिश एंड सबरीना शेफ। द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू जहीद। सो जहीद, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। एंड वी डू हैव आश and we have Riddhi. The next one goes out to you and Neeru Sohao, Madviji, ye sare ke sare log hamara saath de rahe hain on our into Radio Masti. And we do have Sara ji, thank you for watching us live on TikTok from Trinidad and Tobago. Vishwanath Paryag, you are watching us, thank you so much. And Princess Aarti, thank you for being there always. And chaliye ji, filhal ke liye I've got your beautiful song taken from the movie Yaadgar, and I love this one, one of my favorite.
1: You're listening to Radio Masti.

0: You're listening to Radio Masti Retro Rhythm.
1: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है और एक के बाद एक, ऑफ कोर्स आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ दीज ब्यूटीफुल एंड लवली गाने. पुराने गाने हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं 70s, 80s और 90s के गानों के जो जादू है ना, उस दूसरों गानों में नहीं है. एंड एक्चुअली आई लव दैट एरा.

थैंक यू सो मच जी, इतने सारे प्यारे प्यारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं. साइरा, यू आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड यू आर वॉचिंग अस लाइव, थैंक यू सो मच. एंड वी हैव डीजे के एस, डीजे अमृत, रवि सुबा फ्रॉम यूके, दिनेश गोपी एंड जेसिका जो है बोलते हैं अगला गाना मेरी मम्मा ज्ञाना के लिए, ऑफकोर्स एंड शी वॉन्ट्स टू हेयर रूप तिरम वस्ताना. ऑफकोर्स वी कैन प्ले दैट फॉर यू एंड योर मामा. सो मनोज बोलते हैं खूबसूरत गाने लेकर आई हैं, सो आई जस्ट एंजॉइंग इट. ऑल दीज लवली पीपल आर वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक और एंड टू रेडियो मस्ती. And फिलहाल के लिए I've got the next one for you, Mr. Day from the City of Love, from Paris. And ये अगला गाना आपकी खूबसूरत सी वाइफ के लिए एंड आपके परिवार वालों के लिए. तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है प्रणाम आपको भी. एंड स्वीट हार्ट टेक केयर, ओके, आउट ऑफ द पेस ऑफ नेचर एंड द सीक्रेट इज पेशेंस, ऑफकोर्स माई स्वीट हार्ट एंड दैट्स गायत्री जो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो भेजते ही रहती हैं. एंड वी डू हैव ये अगला गाना स्वीट बेबी अंजलि के लिए फ्रॉम काव्या की तरफ से. सरिता जी फ्रॉम गुडलैंड्स, आपके हस्बैंड विनय के लिए आपका बेटा जो है निखिल, बेटी छाया एंड वी डू हैव आपकी बेटी छाया परी एंड फ्रेंड वर्किंग बिंदिया देवीना दुलारी माया संजना और आपका मैसेज अधूरा रह गया. एंड हे रिक्वेस्ट बेबी वाला गाना, ओके, वी लव ग्रैंड चिल्ड्रन युवा सिंह के लिए. एंड वी डू हैव ई डू नंदन फ्रॉम डैडी, रीटा मम्मी, वैलेंटिना पापा, युवराज एंड वी डू हैव केविन एंड वी डू हैव एज वेल आशना फ्रॉम नोत्र डम इंडू नंद. थैंक यू सो मच जी. तो चलिए जी, टू ऑल दोज जिन्होंने बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी. बस यूं ही साथ देते रहना ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, कल फिर आएंगे, लेकिन कल तो शाम को आएंगे इन योर इवनिंग लाउंज 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. Take care, bye-bye, and keep on enjoying the good music. Pari aane wali hai thodi der mein.

0: Thank you so much for choosing us as your radio partner. You're listening to your number one radio station, and that's RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2
1: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार गीता के साथ। नमस्कार।
6: नमस्कार गिनिशा, सभी को हमारा नमस्कार। पूर्व वित्त मंत्री गंगा नायडेन पदयाची द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज सुबह प्रतिक्रिया दी। एक बयान में बैंक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्टों और समाचार लेखों में 2025 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए छापे जाने संबंधी फैलाई गई झूठी खबरों की जानकारी ली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्पष्ट किया कि 2025 में ना तो कोई मुद्रा छापी गई है और ना ही सरकार को कोई धनराशि हस्तांतरित की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने ये भी कहा कि लेन देन से संबंधित विवरण उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में आज अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण दिन है, जहां उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति, अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के अगले दिन आज चर्चाएं ठोस प्रतिबद्धताओं और अफ्रीका फ्रांस साझेदारी के एक नए मॉडल पर केंद्रित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य महाद्वीप के आर्थिक और सहयोग संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाना है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेस स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या देखी जा सकती है। और विदेशी स्तर पर यूके में इन दिनों 70 से ज़्यादा लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री केर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है। ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के भीतर बढ़ता तनाव संकट और गहरा गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अविनी दे पायों के मेजिन कॉन्डो मास्क में 82 साल के 82-year-old के जनाब भाई कसम गंगा पासांत इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे मोहम्मद हनीफ गंगा पासांत के घर अविनी दे पायों के मेजिन कॉन्डो मास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डो मास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। सुल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा में 51 साल की 51-year-old की मिसेस शिरीना बाई मोफीजुडी, जो शिरीन अंतवाहू से

0: ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुपहरबाद के 2:45 बजे उनके शोहर शहजाद अंतवाहू के घर सुल्फेगिनो नंबर 1 वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies,
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

वेल फ्रेंड्स, 2:09 ट्यूजडे आफ्टरनून, 12th of May। बरसाती मौसम यहाँ पर, हल्की हल्की बारिश बादल छाए हुए हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली वो जोरों वाली बारिश है, लेकिन लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। वैसे मौसम में बदलाव तो महसूस किया जा रहा है, रात रात में अब सर्दियाँ भी फील होने लग गई है।

सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी डे हमारे लिसनर्स के साथ. म्यूजिकली आपके साथ हम दिन को सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे हम कहते हैं कि म्यूजिक तो हर एक मूड को सेट कर देता है. सुहेल अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. एंड दिस वन्स द लेटेस्ट, यस, पति पत्नी एंड वो दो. इसी गाने को डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. द लेटेस्ट ट्रैक अंगड़ाई, एंड आवाज है उन्हीं की जिनका गाना हुआ वेरी पॉपुलर इन द ईयर 2025. यस, इट्स इन द वॉइस ऑफ फहीम अब्दुल्ला जिन्होंने गाया था सैयारा. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अंगड़ाई, और इस गाने को हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम उनका साथ देती हुई अर्शियान, और साथ ही हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती
1: रेडियो मस्ती।

0: सो वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचाने के लिए वी आर ऑल सेट और रेडी। और जैसे आप जानते हैं, ये है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज। एंड वेल, बात करने वाले हैं मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3, जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। वहीं इसके अजय देवगन स्टारर हिंदी वर्जन का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के बीच मेकर उमंग मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने बताया है कि अजय देवगन की हिंदी फिल्म ओरिजिनल मलयालम फिल्म से कितनी अलग होगी। वैसे ये तो हम जानते हैं कि जो भी फर्स्ट दृश्यम आई हैं वो एकदम जो है वो जिस तरह से ओरिजिनल साउथ इंडियन वर्जन था उसी तरह से बनाई गई है, लेकिन अब ये जो थर्ड वर्जन है उसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। और आपको बता दें दैट एक इंटरव्यू में बात करते हुए अभिषेक पाठक ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेकर्स 2 अक्टूबर को रिलीज डेट पर सोच विचार कर रहे हैं, जो सालों से इस फिल्म से मजबूती से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा दृश्यम 3 2 अक्टूबर को रिलीज होगी और ये दृश्यम दिवस है। और ये हम जानते हैं दैट ये जो डायलॉग था 2 अक्टूबर वाला, वो काफी फेमस हुआ था दृश्यम फिल्म का। ये फिल्म से जुड़ी हुई तारीख है और लगता है कि फिल्म का हिंदी वर्जन भी उसी तारीख को रिलीज होगा। और हम फिलहाल इसकी तैयारी में कोई पोस्ट प्रोडक्शन प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक यही सोचा गया है कि दोनों ही फिल्में इसी तारीख को रिलीज होगी। तो यहाँ पर बता दी दैट दोनों वर्जन उसी प्लॉट से शुरू हुए थे जहाँ पर दृश्यम 2 खत्म हुई थी, लेकिन अभिषेक पाठक ने बताया कि हिंदी एडिशन में स्क्रीन प्ले और कहानी कहने का जो तरीका है उसमें कई बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि आपको अंतर तभी समझ आएगा जब आप हिंदी ट्रेलर देखेंगे। आगे बताते हुए अभिषेक ने कहा कि मलयाली वर्जन जो है वो एक फैमिली ड्रामा है, जैसा कि जीतू जोसेफ ने लॉन्च के दौरान बताया था कि कहानी मलयालम दर्शकों के लिए बहुत अच्छी है और उन्हें यही पसंद आएगी। हालांकि मेकर्स का मानना है कि हिंदी दर्शक एक अलग तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पसंद करते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारे हिंदी दर्शकों का स्वाद और पसंद अलग है और हमने दृश्यम 2 में भी काफ़ी बदलाव किए थे और दर्शकों ने उसकी काफ़ी सराहना की थी। इसमें कहा जा रहा है कि जो पार्ट 3 है उसमें कहानी और स्क्रीन प्ले में भी बदलाव किए जाएंगे और दर्शकों को ये जो डिफरेंस है वो बिल्कुल महसूस होगा और जैसे उनका फ्लेवर है उसी तरह की फिल्म उन्हें परोसी जाएगी।
1: RM2 Radio Musti In the Mix Radio

एंड आफ्टर दृश्यम 3 हम बात करते हैं फिल्म कृष्ण अवतारम की, जो काफी चर्चाओं में है आजकल। बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है ये फिल्म, कमाल धमाल, और हो रहे हैं इसके मेकर्स माला माल। कृष्ण अवतारम, उसी फिल्म का ये गाना, श्वेता मोहन की आवाज, एंड दैट्स हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, परी का साथ, टिल 4 PM, राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट। बिना बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। भक्ति से भरपूर इस ड्रामा में सिद्धार्थ गुप्ता ने लीड रोल प्ले किया है और हार्दिक गुज्जर द्वारा रिटन एंड डायरेक्टेड ये फिल्म महत्वाकांक्षी कृष्ण अवतारम ट्रिलॉजी की पहली कड़ी है। इस मूवी ने रिलीज के 6 दिनों में ही अच्छी खासी कमाई कर ली है। सिनेमा घरों में इन दिनों नई रिलीज दादी की शादी के अलावा राजा शिवाजी, कुछ हफ्तों पुरानी भूत बंगला और धुरंधर 2 भी मौजूद है। इन सभी फिल्मों के आगे हालिया रिलीज कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और हर दिन अपने कलेक्शन से चौंका रही है। हालांकि इसकी शुरुआत धीमी हुई, लेकिन फिर इसने टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और मुताबिक कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट ने 42 लाख रुपीज से अपना खाता खोला था। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ की कमाई की और तीसरे दिन 2.25 करोड़, चौथे दिन तक आंकड़ा पहुंच गया 3.55 करोड़ और ये फिल्म अभी के लिए तो धूम मचा रही है। सो जैसे हमने कहा कि ना कोई बड़ी स्टार कास्ट और ना कोई बड़ा नाम जुड़ा हुआ है इस फिल्म के साथ, लेकिन फॉर नाउ बॉक्स ऑफिस पर कर रही है धमाल और मेकर्स को कर रही है मालामाल। दैट्स कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
3: आज आजादी है।
2: बॉम्बे टॉकीज, रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
4: So well, best mix of music आपके लिए, अभी के लिए यलेश हमारा साथ दे रहे हैं सुरनाम से। So this one goes out for you and goes out for all Sham family. Thank you so much Radio Masti के साथ जुड़ने के लिए। सात समंदर पार Philadelphia USA से Mr. Shekhar साथ दे रहे हैं आप and dedicating गाना for wife Sandhya, बेटी Ria, उनके लिए बहुत सारा प्यार and thank you for staying connected हमारे सभी listeners जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। It's time for your Bombay Talkies, मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM right here on RM2 Radio Masti।

RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या भी देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज के अंतिम यात्री भी अब उतर चुके हैं, जबकि अधिकारियों ने इस घातक प्रकोप से जुड़े 3 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। एमवी होंजेस कल टेनेरिफ से नेदरलैंड्स के लिए रवाना हुआ, जब उसके अंतिम 6 यात्री और कुछ सदस्य दल जहाज से उतर गए। इस जहाज पर यात्रा करने वाले 3 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 2 में वायरस की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डेमास्क में 82 साल के 82 ईयर ओल्ड के जनाब भाई कसम गंगा पौसांड इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे मोहम्मद हनीफ गंगा पौसांड के घर अवेन्यू डे पायों के मेजिन कॉन्डेमास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डेमास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले में 55 साल के 55 ईयर ओल्ड के श्री यशराज चंबित, जो आकाश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सफर बाद के 3:30 बजे उनके घर रॉयल रोड से चमिल थ्रियोले से उठाकर टेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड पुस द फ्लाक में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड के श्री नवीन्द्र सुनाराम, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2, Radio Musty. More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musty.
2: Radio Musty.

0: आसमानी या आसमानी
1: आसमानी रंग की आंख
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: फील्स अ मस्ती।
4: तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं, 3:08 हो गए हैं ट्यूसडे आफ्टरनून, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूँ परी आपके साथ बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक का कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपकी म्यूजिकल हम सफर टिल 4 PM राइट हियर हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। आप भी साथ दे रहे हैं, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

पर 3:30 हो गए हैं एंड दैट वाज फ्रॉम द फिल्म धुरंधर आरी आरी बॉम्बे रॉकर्स एंड वेल धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. उनकी फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई तो कर ही ली है. इसी बीच रणवीर सिंह के एक नई फिल्म में भगवान शिव का रोल निभाने की खबरें आई. रिपोर्ट्स थी कि रणवीर अमरीश त्रिपाठी की किताब द इमोर्टल ऑफ मेहुला पर बेस्ड फिल्म में भगवान शिव का रोल करेंगे. हालांकि अब अमीश ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है. बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट में लिखा था कि रणवीर सिंह ने अपने प्रोडक्शन बैनर मां कसम फिल्म के तले द इमोर्टल ऑफ मेहुला के राइट्स खरीद लिए हैं. और ऐसा भी कहा गया था कि रणवीर ने इसे ग्रैंड स्केल ट्रायोलॉजी में बनाने का फैसला किया है. बिरला स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप भी की है. हालांकि अब अमीश ने इन सभी खबरों को अफवाह बताया है. उन्होंने एक बातचीत के दौरान बताया कि शिवा ट्रायोलॉजी की राइट्स अभी भी मेरे पास है और अभी तक किसी के साथ कुछ भी साइन नहीं हुआ है. हाँ, मैं रणवीर सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये सारी खबरें सही नहीं है. सुबह अभी के लिए तो रणवीर सिंह के फैंस को करना होगा थोड़ा सा इंतजार. जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद डॉन में वो नजर आएंगे या फिर इस फिल्म जिसके राइट्स उन्होंने खरीद लिए थे भगवान शिव का किरदार निभाते वो नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं और इसके लिए तो अभी उनके फैंस को करना है थोड़ा सा इंतजार. लेकिन अभी के लिए तो उनके फैंस के लिए गुड न्यूज ये है दैट धुरंधर 2 रिलीज हो रही है OTT पर ऑन 15th of May ऑन दिस फ्राइडे. सो वेल, उनके फैंस के लिए ये गुड न्यूज तो है ही है. और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 3:51 and the time to read out aapke messages, aapke dedications jo aapne itne pyar se pahunchaye hain on 5499-1294. So yahan par kehte hain, it's barsati mausam and enjoying the lovely tracks on air. Hamare apadu parivar, Darin, Shweta, Ravish, Prisha, Lavsha, hamare saath jude hue hain aap from Hoshnua. So enjoy the mausam and enjoy the lovely songs. Agla gana hoga aapke naam. Lalita Jeetan, garma garam ilaichi chai ke saath jud gayi hain hamare in gaano ke saath. Dedicating Gana for Saroj, Veena, Kumari, Ratan, Geeta, Gyanthi, Indira, Bhai hai Sajay and Vijay. Sabhi Jeetan Parivar, Lavanchya se humare saath connected hai aap. Gana hoga aapke naam and that's coming from Lalita ji. And well, यहाँ पर रोशनी कहती है कि I'm so sorry, मैं तो रोज़ परेशान करती हूँ. अरे बिल्कुल नहीं, आप परेशान कहाँ करती है. अगर आपका मैसेज ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं. सो थैंक यू रोशनी फॉर द लव. एंड अभी के लिए तो आई एम प्लेइंग सम न्यू सॉन्ग्स, लेकिन नेक्स्ट आवर में आई डू सेंड योर रिक्वेस्ट टू मनीष्मा जो आपके लिए ये गाना ज़रूर चलाएंगे. सो थैंक यू सो मच रोशनी और ऐसे ही प्यार हम तक पहुँचाते रहिए एवरी डे. एंड यहाँ पर कुमार देवीचंद, आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और याद कर रहे हैं डैड श्याम देवीचंद को पेबे से, और उनका नाम शामिल हो रहा है अगला गाना उनके नाम. एंड एंजॉइंग द प्रोग्राम ये है हमारी प्यारी सी गायत्री जी जो हमेशा साथ देती है सुबह हो या शाम. सो अगला गाना होगा आपके लिए. एंड मिस्टर सांगा फ्रॉम फ्रांस, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. हाउ कैन वी नॉट मेंशन योर नेम, गाना होगा आपके लिए. एंड भगवत विदेशी एज वेल साथ दे रहे हैं आप और डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली लवली अनुषा. सो उनके नाम भी गाना और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम की परी आपसे लिए अलविदा. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, लेकिन मेरे बाद आ रही है मनीष्मा लेकर योर रफ्तार वाइब्स. सो स्टे कनेक्टेड RM to Radio Masti के साथ, गुड म्यूजिक आपके लिए राइट हियर. एंड अगर आप साथ दे रहे हैं तो गुड विशेस भी आप तक पहुंच ही जाएंगी. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर ऑल योर लव्ड वंस, फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती.
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: the latest news, and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: टोक्यो टाइम इज ऑलरेडी 4 PM. आइए सुनते हैं समाचार गीता के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार गिनिशा, सभी को हमारा नमस्कार. स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पाइरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले ही संचालन योजनाएं तैयार कर ली हैं. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान ये बात कही. अनिल बेचू ने पुष्टि किए गए मामलों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी. लेप्टोस्पाइरोसिस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन छह लोगों की मृत्यु हुई है वे इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित थे. और हंटा वायरस पर पूछे गए एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि मॉरिशस के पास इससे निपटने के लिए एक तैयारी योजना मौजूद है. एक नई अफ्रीका, अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक लचीली, ये संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी नेताओं ने दुनिया को दिया. मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया. राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्मवित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा. और विदेशी खबरों में, यूके में इन दिनों 70 से ज़्यादा लेबर सदस्यों ने प्रधानमंत्री के स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है. ये अपील तब की गई जब सत्ताधारी पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार के भीतर बढ़ता तनाव संकट और गहरा गया है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
4: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2,
1: Radio Musti.

0: to Radio Musti.
1: बिल्कुल जी, डोंट माइंड मेरा ये कहना, लेकिन हमारे टच में हमेशा रहना. एंड दिस इज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू इग्निशा राइट नाउ ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती. सो चेक योर टाइम गाइस, स्टूडियो की गर्मी 4:08 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी, इग्निशा का प्रणाम. कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? फीलिंग टायर्ड? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं. हम आ गए हैं आपके सारे थकान को मिटाने के लिए, दूर भगाने के लिए, क्योंकि लेकर आए हैं कुछ ऐसे गानों का सिलेक्शन फॉर यू इन दिस ब्यूटिफुल शो, यानी योर स्टार वाइब्स, ऑफ कोर्स फिल्मी राइट्स. और अभी के लिए हम सिर्फ थोड़ी देर के मेहमान हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि के बाद में मनीषमा आएगी साथ देने के लिए. फिलहाल के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड आई एम विशिंग एवरीवन हुज किकिंग ऑफ टू द रोड राइट नाउ हैव अ सेफ ड्राइव, एंड प्लीज ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, क्योंकि बहुत ऐसे जगहों पे हल्की हल्की सी बरसात भी हो रही है. आई डोंट नो आपके यहाँ पे मौसम का क्या हाल है. ऐसे बरसाती मौसम में रोड काफी स्लिपरी होते हैं, सो धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी चलाना. एंड ऑफकोर्स रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गाना हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे. 5499-1294, डू लेट मी नो कौन है जो हमारा साथ दे रही है.
0: RM2 Radio Musti.

0: वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आपकी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम जब फंस गए थे ट्रैफिक में आते आते, मैं बस पूछ रही कब आऊंगी, कहीं पर पहुंचना है, काम शुरू हो चुका है, मैं फिर भी कहाँ पर नहीं पहुंची। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानती हूँ अभी ना मैं समझ सकती हूँ आपके दिल की बात। बस आई जस्ट वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी पेशेंट ऑन द रोड एंड वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच गिनीशा फॉर यू नो थोड़ी सी हेल्प के लिए। और यहाँ पर आपके लिए एक जोकोको है ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्टर ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन टू प्ले विद अस सिंपल है, बस सुनिएगा ये सवाल।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: तो चलिए जी, यहाँ पर ये जो गेम है स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026। तो सवाल ये रहा आप सभी के लिए इन दिस आफ्टरनून टू बी एबल टू विन वन गिफ्ट गुडी बैग, यू कैन से दैट वर्थ 3,000 रुपीज और 3,500 रुपीज। ओके, यहाँ पर सवाल ये रहा इन दिस आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वाई शुड मोटरसाइकिलिस्ट अवॉइड व्हीकल ब्लाइंड स्पॉट्स? Why should motorcyclists avoid vehicle blind spot? बताइएगा 5499-1294 पर विद योर फुल नेम एंड एड्रेस के साथ। हम वेट कर रहे हैं आपके पार्टिसिपेशन का। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक इन योर रफ्तार वाइब्स।

0: वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि क्यों, व्हाई शुड मोटरसाइकिलिस्ट्स अवॉइड अ व्हीकल ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, एंड द राइट आंसर इज बिकॉज ड्राइवर्स मे नॉट सी देम. जी हाँ, ड्राइवर्स मे नॉट सी यू. अगर आपने बस सोच रहे थे कि कौन सा सही जवाब है, बहुत सारे सही जवाब मिले हैं एंड दिस वन इज द राइटेस्ट आंसर. एंड यहाँ पर हमारे साथ है हमारे लकी विनर, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे लकी विनर है, उनका नाम है प्रवेशा बिपिन जवाहर जो रहते हैं रिविया जुपर्स. कंग्रेचुलेशंस. जी हाँ, इस आफ्टरनून में आप हमारे साथ खेले हैं, थैंक यू सो मच. एंड आपको मिल रहा है ये गुड बैग वर्थ 3,000 रुपीज टू 3,500 रुपीज. जी हाँ, स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026. एवरी ईयर मोर देन 1.3 मिलियन पीपल लूज देयर लाइव्स ऑन द रोड वर्ल्ड वाइड. सो मिलियंस मोर आर इंजर्ड. Pedestrian cyclists, motorcyclists are among those most vulnerable and most at risk road users. So road safety remains a shared responsibility, ladies and gentlemen. Respecting speed limits, wearing helmets and seat belts, being vigilant toward pedestrian and sharing the road responsibly are essential to reduce accidents. See, I trust you and you trust us giving you all the information. थोड़ी देर में traffic updates. अभी के लिए आप enjoy कीजिएगा ये जवानी तेरी, taken from movie मेरी प्यारी बिंदु.
1: Raftaar vibes, filmy rides,
2: RM2,
1: radio musty.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: बस इस बेरंग मौसम में थोड़ा सा रंग डाल देते हैं आपके लिए। स्काई फोर्स मूवी से लिया गया। Awesome afternoon, good to you. Drive safe. We are here to keep you company.

0: बजकर 40 मिनट हुए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो फॉर सम अपडेट अबाउट द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Sports news, latest updates.
3: Sports news.
4: Radio Musti in the mix.
0: गर्मा गर्म खबरों के साथ हमेशा हाजिर है स्टूडियो में हमारे स्पोर्ट्स गुरु। गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी।
5: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून लिसनर्स। सो गर्म गर्म है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा इट्स एथलेटिक्स द अफ्रीकन सीनियर चैंपियनशिप, ये आखा गाना में लगेगा और आज पहले ही दिन हमारे कई एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। इनमें नुआ बीबी, ओफे टोपीज और जोशन वेंकटासामी, ये लोग 100 मीटर सीरीज में होंगे, ये 8 बजे से शुरू होगा। फिर लड़कियों में ओसियान मोइट और अमेली एंटोनी, ये 100 मीटर में होंगे 7:30 बजे से, जबकि एंजेलिक अबेरले वो होगी 400 मीटर के सीरीज में 8:30 बजे, और बेना बाचिस्ट वो फाइनल में होगा लॉन्से जू पुआ, ये 9:05 पर शॉर्ट पुट, और ये एक पहला रिजल्ट आ सकता है बेरना बाचिस्ट के लिए, तो इनको कहेंगे ऑल द बेस्ट आज से शुरू। और विडो एट अफ्रीकन लेवल हमारे अतीत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट कि मेडल आएंगे इस ज़रूर। ऑल द बेस्ट टू द टीम मोरिस। राइट, चलते हैं इंग्लैंड की ओर जहाँ पर रिलीगेशन बैटल बहुत टफ हो गया है। ये बात पक्की है कि एक लंदन की टीम रिलीगेट होने वाली है, टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम यूनाइटेड। अभी ही बात हो रही थी कैंटीन में हमारे दोस्त विशाल से, और विशाल बता रहे थे कि टोटनहम हॉटस्पर के लिए जो बचे 2 मैच हैं, इट्स क्वाइट, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। चेल्सी के खिलाफ एवे मैच, और उसका जो उधर फुलहम के लिए, नॉट फुलहम बल्कि वेस्ट हैम के लिए रिलेटिवली मैच अच्छा है, एवर्टन के खिलाफ भी खेलना है टोटनहम हॉटस्पर को। सो दैट मीन्स Everton still hopeful for a Euro place, और Chelsea भी, why not? और Chelsea का final तो हो जाएगा इस Saturday को, FA Cup final, you never know the result, अगर result अच्छा आएगा तो उनमें जोश आएगा इस match के लिए, और अगर हार भी गए so they'll try the best to go up in the league, hoping to go in Europe. So Tottenham Hotspur टोटे टूट रहा है इट्स West Ham or स्पर्स। इधर मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वी आर स्टिल फाइटिंग, अभी तक हमें विश्वास है कि वी कैन ब्रिंग आउट समथिंग। पेप गॉर्जुला कहा कि द प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, दे आर 2 पॉइंट्स बिहाइंड लीडर्स, जा सकते हैं अगर जीत हुई पालिस के खिलाफ, लेकिन अगर हार हुई तो उसने कहा कि माइकल आर्टेटा विल क्लिंच द टाइटल अगेंस्ट बर्नली, तो उसने अपने खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी। सो लेट्स सी क्या होगा ये मैच जो खेला जाएगा। सो लेट मी गिव यू द फिक्स्चर्स, आज तो प्रीमियर लीग के मैच नहीं है लेकिन चैंपियनशिप प्रमोशन प्ले ऑफ का दूसरा सेमीफाइनल साउथहैम्पटन वर्सेस मिडिल्सब्रो, फर्स्ट लेग में इन दोनों के बीच मैच रो गया था 0-0, और कल जस्ट टू रिमाइंड यू हल सिटी ने मिलवॉल को हराने का हल निकाला, और हल सिटी इज इन द फाइनल, द फाइनल वेम्बले मैच, उसके खिलाफ कौन होगा साउथहैम्पटन या मिडिल्सब्रो ये आज रात पता चलेगा। स्पेन के लालीगा में वी हैव गॉट 3 मैचेस, सेल्टा वीगो लेवेंटे, बेटिस एल्चे, ओसासुना एटलेटिको मैड्रिड। फिर इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान का मुकाबला इंटर काशी से होने वाला है, तो ये आज के मैच। कल के मैच वेंसडे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, इम्प्लीकेशन क्या होगा कल सुबह बताएंगे, लेकिन जस्ट टू टेल यू मैनचेस्टर सिटी के लिए हारना मना है, नहीं तो बाय बाय लीग टाइटल। सो मैनचेस्टर सिटी 74, आर्सेनल 79, जबकि एस्टन विला 44 पॉइंट्स, दे कैन क्लाइंब टू 47, स्टिल टॉप 10 से नीचे, सो लगभग क्रिस्टल पैलेस सेफ हैं, दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मैच अगेंस्ट इन कॉन्फ्रेंस लीग, इसीलिए क्रिस्टल पैलेस थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, जबकि सिटी पर प्रेशर होगा ज़रूर। सो ये कल के मैच, और कल काफ़ी मैच भी खेले जा रहे हैं बाकी लीग में भी, इस पर समय समय पर आपको अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे, और वाई नॉट विल सी द EFL प्ले ऑफ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्रिकेट इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग मोर पर हैं अभी प्ले ऑफ में जाने के लिए द टीम ऑफ फाइटिंग, खासतौर पर कल के मैचों के बाद अब आज क्या होगा, आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों फ्रेम में हैं टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो लीग टेबल में देखते हैं, अभी राजस्थान रॉयल्स छठे स्थान पे है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले पोजीशन पे 14 पॉइंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स, गुजरात टाइटन 14 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स 12, राजस्थान रॉयल्स 12 और दिल्ली कैपिटल 10। सो दैट मीन्स तगड़ा मुकाबला होने वाला है फॉर द प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या होगा, कैसे क्या हो रहा है, इस पर जानकारियां आपको आज सुबह से हम लोग दे रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि वी आर कमिंग अप विद मेनी थिंग्स, ग्रुप प्रेजेंटेशन ये सब होगा, वी हैव स्टार्टेड टुडे और अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे, बाद में चलकर वी हैव गॉट सम कॉम्पिटिशन्स एज वेल, सब कुछ होगा। जस्ट बी रेडी फॉर दाई दाई। दाई दाई माने दाई दाई सुनो
3: Get ready for the biggest World Cup ever!
6: 2026 FIFA World Cup.
3: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath
6: chaliye
3: United States, Canada aur Mexico.
6: Radio Masti ke saath road to the World Cup.
0: And here we go for the Dai Dai, ladies and gentlemen.
5: Road to World Cup 2026. The countdown is on. Kickoff June 11, Mexico City ke Estadio Azteca mein. Group A mein hai hosting Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic. Mexico, the L3 ke saath bahut expectations hain. Manager Javier Aguirre preliminary selection banane laga hai. वेटरन खिलाड़ी गुयमो ओचुआ ट्रेनिंग कैंप में आ गया है, उसके लिए रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप होगा। राइजिंग टैलेंट 17 ईयर ओल्ड जिल्बेर्टो बोहो मेक्सिको वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे जवान खिलाड़ी होगा। वर्ल्ड कप से पहले 3 फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। The Bafana, first appearance in 16 years. अपने ग्रुप को टॉप करके क्वालिफाई हुए, 3 बार वर्ल्ड कप में भाग ले चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, ग्रुप स्टेज तक ही रह पाई The Bafana टीम। साउथ कोरिया को The Tagwek Warriors नाम दिया जाता है। 11th वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, मोस्ट सक्सेसफुल एशियन साइड, 2 बार नॉकआउट स्टेज में जा पाए हैं, 2002 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुए थे, 2018 में फाइनल ग्रुप मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को 2-0 से हराई थी ये टीम। नाम पे मर जाए, मैदान में कोरिया नहीं अच्छे अच्छों को कोर के उखाड़ फेंकते हैं। सोन यून मिन, किम मिन जाई जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। फिर चेक रिपब्लिक, 2 बार रनर अप चेकोस्लोवाकिया के नाम पर 20 साल बाद वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहे हैं। की प्लेयर्स लैडिस्लाव केस्टिच टीम कप्तान वुल्फ से, पैट्रिक चिक बायर लेवरकुसन का स्ट्राइकर, टोमास सुजेच वेस्ट हैम का खिलाड़ी। सो टीम ए में, ग्रुप ए में मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक। रोड टू वर्ल्ड कप, कीप ऑन लिसनिंग ऑन रेडियो मस्ती।
0: Well, thank you so much. Dai-dai, let's go.
3: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

मान लेनी भी चाहिए, कभी कभी दिल की बात सही भी हो जाती है। Good afternoon again, welcome back in the second hour of the Year of Tar Vibes. Of course, 5:08 हुए हैं, 9 मिनट होने को हैं, यहाँ पर आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस हो रहे हैं, बहुत चार। वैसे अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक।

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और एंटी
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए हो जाए नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय ब्रदर इन लॉ रवीन जियाना, सिस्टर मंशा जियाना, विदुषा, केविन, रश्मि, आयान, आंतिश, लालमाची परिवार की ओर से है। लालमाची के परिवार वहाँ पर परिवार बसे है सतीश सिचिन ऑल्सो और रिविया जो होपा। ओके नेक्स्ट सॉन्ग इज टू माय सिस्टर डिंपल ऑल्सो रिकाय, ब्रदर इन लॉ प्रवीण रिकाय, नीस है आदेश नायन, आखिल है नामरी, यार आप रामोरी के रहने वाले हैं, एंड दिस वन फ्रॉम सती एट रिविया डू रोंपा। सो डेडिकेटिंग दिस मैसेज टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ट्यूनिंग टू आरएन टू रेडियो मस्ती। दिस वन गोज़ टू प्रवीण एंड ऑल्सो माई लवली वाइफ काजल। सो थैंक यू, यहाँ पर जाना बोल रही हूँ विश्वात्मा अगठिया, सम रियली नाइस सॉन्ग आपने बताया है। वैसे अगठिया सात समुंदर पार भी अगर आप चला सकते, रीमा, शेष्टा, जेनिता, अंशनी, सिल्विया और यूवी, कृषि, सुसरन फैमिली ऑफ फ्लैक्स, लव यू ब्यूटीफुल, बेस्ट रेडियो स्टेशन आरएम2 रेडियो मस्ती। क्या बात है, आप जुड़े रहिए, हमेशा यूं ही साथ निभाते रहिए। 5:15 हुए हैं, थोड़ी देर में द ट्रैफिक अपडेट। अभी के लिए आप एंजॉय कीजिएगा 10 बहाने, बस बहाने नहीं चाहिए, आपके मैसेजेस चाहिए 5:49 and 1:49 पर।

0: टेकन फ्रॉम द मूवी गुमराह। आज घर नहीं जाना, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये गाना नहीं मनीषमा, मुझे तो घर जाना ही है, इतने थक गए हैं, ऊपर से ये जो मौसम है ग्लूमी ग्लूमी वेदर, लेजी लेजी वेदर, 5:30 बजने को है बस जोन है बाकी। अभी के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बोनसवार संगार ऑफ फ्रांस की तरफ से मैसेज आया है। आई गेट हियर आल्सो हे सिमारा इज बैक, हाउ आर यू सिमारा, नमस्ते माय मनीषू जी, आप ना बड़ी क्यूट हो, ऑल मार्वेलस सॉन्ग्स प्लेइंग दैट यू चोज फॉर अस, विशिंग यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल इवनिंग आउट देयर, लव यू सो मच, लव यू टू सिमारा, राम राम जी, विशिंग मसाई मिसेज Satya Bhajawan from Nouvelle France, a very very happy birthday from Sister Kamala, and also from Puddador Village say hey Indira, from Kyopip son hai Vimal Bahu Jenny Shine aur Bhajawan parivar ki taraf se 100 saal tak aap ji very very happy birthday. वैसे यहाँ पर अंशा कहती है हेलो हाय हाउ आर यू, मैं तो ठीक हूँ, आगे जी गुड इवनिंग, कैन यू प्लीज डेडिकेट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय सॉन आनव, आज वो 6 साल के हुए हैं, हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम पापा राकेश, मामा है शीतल, ब्रदर है तनव, सिस्टर अतानवी एंड ऑल कुटन फैमिली ऑफ बेलवेरे ऑल्सो। यहाँ पर भारत बिदेशी कह रही है कि एनी सॉन्ग टू अनुषा प्लीज डेडिकेट इट टू हर, very nice selection on RMT Radio Masti, aap pasand kar rahe ho hamare selection ko, ye to hum chahte hain,
1: raftaar vibes filmy rides
2: RMT Radio Masti,
0: yahan par lalita jitan jur chuke hain, लेवा जैसे सुल्ताना के लिए डेडिकेट करते हैं, वादी के लिए, शिमला के लिए, आश्ले, रवि, विमी, रोशी, मीमी और टीचर्स कलीग्स, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम

0: उस मूवी से लगा गया ये गाना लाल घाघरा फॉर यू। वैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो फिर ऑफिस के लिए कुछ पहनना चाहते हो, थोड़ी ना घाघरा की जो फैशन है टिप है आपको देंगे, नहीं, लेकिन एक ऑफिस वेयर का जो फैशन टिप है आपको देने वाले हैं। आप जुटे रहिए हमारे साथ।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हरकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: आपके लाल घाघरे को भूल जाओ। ऑफिस जाते वक्त आपको आपके ऐसे कपड़े चूज करना है जो कंफर्टेबल भी हो और क्लासी भी लगे। क्या कहते हो, एक स्मार्ट फॉर्मल पैंट के साथ पास्टल शर्ट या सिंपल एक कुर्ती बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। हैवी एक्सेसरीज को भूल जाओ, कह दो बाय बाय।

0: कलरफुल वॉच और एक नीट शूज के ही परफेक्ट ये ऑफिस वाइब देती है। अगर ऑफिस में एसी ज्यादा हो जाती है, यू नो, लाइट ब्लेजर या फिर कार्डिगन कैरी कर लेना, ना भूले। ओके, स्टाइलिश भी लगेगा और प्रोफेशनल लुक भी मेंटेन होगा। और याद रखिए, सिंपल और क्लीन ड्रेसिंग ही सबसे पावरफुल फैशन स्टेटमेंट होता है। क्या कहते हो, सहमत हो ना?
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: क्या बात है करण नवनी की आवाज में. दिस इज द रिप्रीज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वर्जन, यू नो, सात समंदर पर. वैसे हम तो वो वाला ओरिजिनल वर्जन जो आपने मांगा नहीं चला पाए, लेकिन ये वाला गाना स्पेशली फॉर यू गाइस. आई गेट हियर नमस्ते मनीषमा जी टू माय स्वीट बेबी अर्शाद. आई वांट टू रिमाइंड यू हाउ मच आई लव हिम. वन डे देयर विल बी नो डिस्टेंस विद इन यू एंड मी एंड आवर बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्गर देन बिफोर द डिस्टेंस बिटवीन अस. लव यू लव यू लव यू टू मच बाबा फ्रॉम बेबी रेबेका. क्या बात है रेबेका जी, आप तो बड़े प्यारे हो. वैसे सात समंदर पर पता नहीं कहाँ आपके साजन हैं, कहाँ बसे हुए हैं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप अपने प्यार से ज़रूर मिले. ओके आगे क्या अमरीका पुरुष राम पोर्ट लुइस से मनीषमा लव यू लव यू टू. आप हमेशा आ सकते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहे हैं. और एनी टाइम यू कैन कम एंड मीट अस ऑल द आरजेस आर हियर. यस ऑफ कोर्स आगे क्या हेलो लवली बेनर लविंग द beautiful program Kumar Devichan playing the guitar right now. Kya baat hai, lovely song please dedicated to my dad Shyam Devichan of Peribe. I love you papa.
1: Raftaar vibes filmy rides
2: RM2
1: radio must.
0: Chali good evening all team. A nice song please for me Shanaz Jogi of Peribe Radio Ampa to all dear ones and families. Thank you so much. यहाँ पर देखकर फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी फॉर यू आ रही है आपके लिए सुंदरी की प्यार.

0: तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। 5:55 हुए हैं। कमिंग अप द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली फॉर ऑल दोस जो कि 2000 के बड़े चाहने वाले हैं अभी के लिए। आई एम गोना प्ले द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना कैच अप विद यू इन द लास्ट आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2 रेडियो।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: आप सुन रहे हैं RM2 Radio Masti. घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रंगनाथन पदयाची द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय बैंक स्पष्ट करता है कि 2025 में न तो 83 बिलियन रुपए की रकम के नोट की छपाई हुई है और न ही सरकार के मध्य इतने पैसे का ट्रांसफर हुआ है। एक नया अफ्रीका, ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। डॉ. नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में आर्यन नवामागी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। कई बार अपनी जान खतरे में डालकर स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों की सेवा

0: का और उनका इलाज करते हैं। आज 12 मई को मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मौका है उन फ्रंटलाइन नर्स का आभार प्रकट करने का। इस संदर्भ में आज कई गतिविधियां आयोजित की गई और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश है समाचार विस्तार से। पूर्व वित्त मंत्री गंगानंदन पदयाची द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर किए गए एक पोस्ट के बाद बैंक ऑफ मॉरिशस ने आज सुबह प्रतिक्रिया दी। एक बयान में बैंक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्टों और समाचार लेखों में 2025 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए छापे जाने संबंधी फैलाई गई झूठी खबरों की जानकारी ली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्पष्ट किया है कि 2025 में ना तो कोई मुद्रा छापी गई और ना ही सरकार को कोई धनराशि हस्तांतरित की गई है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने ये भी कहा कि लेन देन से संबंधित विवरण उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित बुलेटिन में देखे जा सकते हैं। एक नई अफ्रीका अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक लचीली, यही संदेश आज नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में शामिल लगभग 40 अफ्रीकी राष्ट्र और सरकारी प्रमुखों ने दुनिया को दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम का सम्मेलन कक्ष में पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो का भाषण, जो अफ्रीकी महाद्वीप के आत्मवित्त पोषण पर केंद्रित था, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम विदेश यात्रा पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगियान नवामागी अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। राष्ट्रीय सभा में आज उन्होंने सदन के प्रमुख के रूप में कार्यों की अध्यक्षता संभाली। पीएमक्यूटी सत्र के आखिर में उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल जैसा रहा। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: मंगलवार को 11:20 पर मुस्कुराते हुए फाइलें हाथ में लिए अंतरिम प्रधानमंत्री ने संसद भवन में प्रवेश किया।
2: Comment allez-vous? Je suis sereine.
1: Agyana Wamari के लिए ये बेहद प्रतीकात्मक दिन शांति के तहत बढ़ाया गया। फ्रंट बेंच में बैठकर उन्होंने दिन की संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता की।
2: PMQT members.
1: सांसदों के सामने उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित प्रश्नों के जवाब दिए, जो राष्ट्रीय महत्व के कई समसामयिक मुद्दों से संबंधित थे।
3: It's a great honor and privilege to ask the first PQB631 of this PMQT to the first female DPM and acting Prime Minister of our Republic, B631.
2: Thank you. Third member for Port Louis North and Mont Ayloung.
4: Thank you, Madam Speaker. Since this will be my first speaker address to the DPM, please allow me to address my sincere congratulations to Honourable Nawamari for her promotion.
1: PMQT के अंत में उन्होंने संभव को business as usual बताया।
2: Business as usual.
5: C'est une responsabilité que vous pouvez
2: assumer selon mes possibilités, mes moyens.
1: Ariana Nawamari अपने मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
6: On connaît encore trois questions là, donc questions posées par les parlementaires pour mon ministère donc matin.
1: PMQT के बाद कई सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। ये संसद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले अनुभव के बाद समर्थन का एक संकेत माना गया।
0: अगियान नवामागी ने आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान 6 सवालों के जवाब दिए। ये सवाल ड्रग की जब्ती, रोड्रिक्स के मौसम संबंधी आंकड़ों और सड़क सुरक्षा से जुड़े थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क पर खतरनाक व्यवहारों के खिलाफ उपायों को और मजबूत कर रही है। एक बार फिर करुणा लालू को सुनते हैं।

0: B631.
1: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान पहला प्रश्न रॉड्रिक्स के लिए मौसम और जलवायु संबंधी डेटा की उपलब्धता पर आधारित रहा। आगियाना वोमागी ने रॉड्रिक्स की जनता को सूचित करने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था का उल्लेख किया। गंभीर मौसम परिस्थितियों के लिए एक प्रोटोकॉल भी पाया जाता है।
2: Early warning bulletins related to severe weather conditions, such as heavy torrential rainfall, strong winds, heavy swells, tropical cyclones and tsunamis, are issued by the MMS for Rodrigues when the island is exposed to such risks.
1: पहली जनवरी 2026 से 7 मई तक सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई है। बिना इरादे की हत्या के 37 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक चालक भी शामिल हैं जो नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग के लिए वर्तमान में जेल में बंद हैं।
2: It has been decided last week to amend the penalty point system by increasing from 3 to 6 points to 5 to 10 points for those using telephone while driving.
1: अंतरिम प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को हवाई अड्डे पर 16 किलो कैनाबिस और कैनाबिस रेजिन की जब्ती के बारे में भी जानकारी दी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक फ्रांसीसी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस क्वार्टर्स के संबंध में 608 आवासों में से 545 में लोग रह रहे हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए पुलिस क्वार्टर्स के निर्माण की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पाइरोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले ही संचालन योजनाएं तैयार कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान ये बयान दिया। मंत्री अनिल बेचू ने पुष्टि किए गए मामलों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लेप्टोस्पाइरोसिस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई वे इस बीमारी के गंभीर रूप से पीड़ित थे। और हंटा वायरस पर पूछे गए एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि मॉरिशस के पास इससे निपटने के लिए एक तैयारी योजना मौजूद है। आस्था गोबिन चितामन को सुनते हैं।
4: स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने देश में फैल रही संक्रामक बीमारियों के मामलों पर जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक चिकुनगुनिया के 2816 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 102 मामले अभी भी सक्रिय हैं। डेंगू का एक मामला सामने आया, 5 इम्पोर्टेड मामले रहे, सब मरीज ठीक हो गए हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस के 21 मामले सामने आए, 6 मरीजों की मौत हुई। सभी 6 मरीजों को पहले से स्वास्थ्य परेशानियां थी। एमपॉक्स के 2 मामले सामने आए, 1 स्थानीय और 1 विदेशी, दोनों व्यक्ति मारागास्कर से मॉरिशस लौटे थे। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, उनके किसी भी करीबी व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं पाया गया।
5: Both have recovered. Their immediate contacts have been followed up, and none have shown any sign of infection.
4: स्वास्थ्य मंत्री ने इन बीमारियों से निपटने के लिए मंत्रालय की राष्ट्रीय रणनीति पर भी जानकारी दी।
5: Our strategy includes enhanced surveillance of suspected and confirmed cases, rapid reporting from hospital clinics and laboratories, early clinical recognition by doctors and nurses, immediate treatment protocols, audit of deaths and severe cases to identify preventable factors, strengthening of laboratory diagnosis including timely testing, rodent control, environmental sanitation in affected areas.
4: अनिल बेचू ने कहा कि सभी इलाकाई अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के अलग इलाज और देखभाल की व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने इन बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में नागरिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। इस संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष नेता जुले जोंगा ने कई अतिरिक्त प्रश्न भी किए।
6: What specific factors are contributing to that high rate of death?
4: स्वास्थ्य मंत्री ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू में दर्ज लेप्टोस्पाइरोसिस के मामलों की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में इस बीमारी का अधिक गंभीर रूप फैल रहा है और मृत्यु दर पर अन्य

0: में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्यूमिगेशन के लिए रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि मच्छरों में अब इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।
1: Has put a preparedness plans particularly at borders so that they are properly screened to avoid having any cases in Mauritius.
2: My ministry is maintaining vigilance through surveillance, clinical awareness, coordination with public health and environment services, and we are in contact with the international organization WHO and COI also. They are trying to give us all type of help, and in case of any case, if you come, is it a doubt? Then of course we have got the National Institute for Communicable Disease, a laboratory in South Africa, and we passed there in Madagascar. We have got contact with them. We'll be going to send the urine for inspection and all.
3: और जैसा कि हमने कहा था, एक नया अफ्रीका ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और ज्यादा कारगर, ये संदेश आज नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह में एकत्रित लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेताओं द्वारा विश्व को दिया गया। ज्यादा जानकारी एक बार फिर आस्था गोविंद चितामन के साथ।
0: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का आधिकारिक उद्घाटन मंगलवार सुबह नैरोबी के केन्याटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है नवाचार और विकास के लिए एक मजबूत अफ्रीका। इस बड़े सम्मेलन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हैं। सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों और राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। अपने उद्घाटन संबोधन में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों के बीच अधिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अफ्रीका आर्थिक और जलवायु भू राजनीतिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके।
1: The times before us demand stronger cooperation, renewed multilateralism and partnerships grounded not on hierarchy but in sovereign equality, mutual respect and shared responsibility. Enduring partnerships must not be built on dependency, but on sovereign equality. Not on aid or charity, but on mutually beneficial investments.
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने कहा कि अफ्रीका का आर्थिक परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फ्रांस आधारभूत ढांचा, ऊर्जा और नवाचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ सहयोग जारी रखेगा। इमैनुअल माक्रों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका को स्थायी सीट दिए जाने के समर्थन को भी दोहराया।
4: Qui regarde avec lucidité le passé, qui veut réinventer la relation monétaire et économique, qui veut investir dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent, et qui, avec respect, veut être aux côtés de l'Afrique pour son propre agenda. Et donc la relation entre l'Afrique, elle est fondée en effet sur la lucidité, le courage, le respect et une volonté d'avoir, au fond, un agenda partagé.
0: यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफ्रीकी देशों को अपने आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा, ताकि विकास की गति तेज हो और आर्थिक मजबूती बढ़ सके।
1: अफ्रीका एस एट द लीडरशिप इन सिक्योरिंग द सिविली कमिटमेंट टू एक्सपेंड द लेंडिंग पावर ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, टू मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल एट स्केल एंड टू डिलीवर रिलीफ from the debt burden crushing developing economies. It is African leadership through the African Development Bank that is advancing a bold vision to reform the continental's financial architecture from within, mobilizing African resources for African priorities and prosperity.
0: अफ्रीकन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण और अफ्रीका में विकास के नए

0: अवसरों पर जोर दिया। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 अफ्रीका और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सम्मेलन के अंत में नैरोबी डिक्लेरेशन अपनाए जाने की उम्मीद है, जो एक अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली अफ्रीका की दिशा तय करेगा।
1: सीबी के 25% उपभोक्ता यानी लगभग 1,28,000 परिवार बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी से प्रभावित नहीं हुए हैं। ये जानकारी मंत्री पत्रिका सेवादेन ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और सीबी मध्य पूर्व में जारी युद्ध के सीधे प्रभावों से सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयासों में जुटे हुए हैं। उनको सुनते हैं।
2: Si le CEB avait choisi de répercuter l'intégralité de la hausse du coût de fuel lourd sur les consommateurs, le tarif d'électricité aurait dû augmenter d'environ 25%. Ceci n'a pas été le cas. Malgré la situation financière extrêmement tendue, le gouvernement et le CEB ont veillé à protéger les catégories les plus faibles, les plus vulnérables de la population, ainsi que les petites entreprises. Près de 128 000 familles clients du CEB, incluant les 8 000 bénéficiaires des kits photovoltaïques, ne seront pas affectés par la hausse tarifaire. Ces mesures concernent principalement les ménages enregistrés au Social Register of Mauritius. Au total, Monsieur le Vice-président, 25% de la clientèle du CEB bénéficiera d'un mécanisme de protection contre la hausse des tarifs.
1: भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आज दोपहर बाद राष्ट्रीय सभा में दिए गए एक बयान में एक्स सीएचए घरों में अस्बेस्टस की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में असंगति और पुनर्वास के लिए पात्रता संबंधी बाधाओं जैसी समस्याओं के कारण अब तक ठोस कदम उठाना संभव नहीं हो पाया है। शकील मोहम्मद ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई उपायों को आगे बढ़ाने की बात कही। प्लेनलोजा स्थित सेंट्रल सप्लाईज डिवीजन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है, को देश के मध्य भाग में स्थित एक नई इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही कापमालुगु और बिलिया में स्थित दो नई इमारतों का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। ये कदम राष्ट्रीय सभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी की दवाइयों के भंडारण संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उठाया गया है। इसके अलावा रामेटोरिया के अनुसार इस रिपोर्ट का दुरुपयोग राजनीतिक और जनता को लुभाने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष आद्रियन जुवाल द्वारा किया गया। इसी संदर्भ में रामेटोरिया ने पीएसी के चार अन्य सदस्यों के साथ मिलकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी किया। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय 2 बिलियन रुपए से ज्यादा की दवाइयां और मेडिकल सामान खरीदता है। ऐसे में इन दवाओं को सही तरीके से संभालना और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस काम में दवाओं की एक्सपायरी डेट पर लगातार नजर रखनी होती है, साथ ही खराब या एक्सपायर्ड दवाओं को अलग सुरक्षित जगह पर रखना भी जरूरी होता है। प्लेनलोजा में स्थित पुराना गोदाम 1965 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब ये काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और मेडिकल सामग्री को नए और बेहतर गोदाम में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वहीदा गोपी बताती हैं, प्लेनलोजा का सेंट्रल सप्लाई डिवीजन और कास्टेल का विभाग एक इकाई तले संगठित होने वाली है। हमने कापमालुगु और बेलिया में जगहों की पहचान कर ली है। ये नए मूल ढांचे हैं, वहाँ दवाओं को रखा जाएगा। तेईस अप्रैल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष आद्रियन जुवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दवा गोदामों पर एक विशेष रिपोर्ट पेश की थी। 2021 से 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित इस दस्तावेज में कई कमियों का जिक्र किया गया है। जैसे दवाओं को सही स्थिति में न रखना, बिजली की समस्या, एक्सपायर्ड दवाओं की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था में कमी। लेकिन 10 मई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 5 सदस्यों ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का राजनीतिक फायदा उठाने की

0: कोशिश की जा रही है और इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य राम इतवारिया ने बताया,
1: अद्रियन
0: जुवाल ने लोगों के जहन में दवाओं की किस्म को लेकर संदेह पैदा किया है। पीएससी के अध्यक्ष होने के नाते ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग है। दवाओं का संचालन और भंडारण एक गंभीर मुद्दा है। किसी भी सरकार को इसका सही प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए सही जगह और सही परिस्थितियां होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक नए दवा भंडारण केंद्र के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मूल्यांकन का काम भी खत्म हो गया है।
2: हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नर्सेस स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। वे दिन रात मरीजों की देखभाल कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉरिशस में स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी कमी को देखते हुए विदेशी नर्सों की भर्ती की जा रही है। कुछ निजी क्लिनिकों में इनकी बढ़ती संख्या देखी जा सकती है। और विदेशी खबरों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने को मूर्खता कहा। उन्होंने कहा कि अब वे इस कमजोर युद्ध विराम पर और समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहिली इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:30 बजे सूरज निकलेगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

जॉन कैनेडी स्ट्रीट निविया मिल त्रियोले में 80 साल के 80-year-old के श्री बुधन गंगा विसुन, जो हंसराज गंगा विसुन से ज़्यादा जाने जाते थे और हिंदी अध्यापक थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी शेला ताकोरी गंगा विसुन के घर निविया मिल त्रियोले से उठाकर टेमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन में 70 साल के 70-year-old के श्री वेनी काउलिसा, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पर्यटन मंत्रालय में उच्च अधिकारी थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई अमित काउलिसा के घर नंबर 32 कॉन्डोस लेन काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। रॉयल रोड पोस्ट फ्लैक में 75 साल के 75-year-old के श्री नवींद्र सुनाराम, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं।

0: इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। स्टेलियो टेलेमार्क एवेन्यू कोइटेन स्टेनली में 41 साल के 41-year-old के श्री कुमार रेशनंद संतोखिया, जो गॉस से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके भाई केनी संतोखिया के घर स्टेलियो टेलेमार्क एवेन्यू कोइटेन स्टेनली से उठाकर कोडेगार्ड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 PM। शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 90 साल के 90-year-old के श्री भगवत गोकुल, जो अनिरुद्ध से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर बिकारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। फ्लोरिडा लेन तैरूज में 76 साल के 76-year-old के श्री भरत हीरामन, जो जगदीश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर फ्लोरिडा लेन तैरूज से उठाकर वामौशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। पावे रोड पिचराफ्रे में 72 साल के 72-year-old के श्री ज्ञानदत्त भोला, जो ज्ञानदत्त से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी नलिनी भोला के घर पावे रोड पिचराफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिचराफ्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1:30 PM। नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा में 66 साल के 66-year-old के श्री गणेश्वर नेवुल, जो रामेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई मनोज नेवुल के घर नंबर 31 रू सेंट फामी सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रेत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। इंग्लैंड में 73 साल के 73-year-old के श्री सूर्यदेव रिमल, जो सुरेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी तारा रिमल के घर सरे इंग्लैंड से उठाकर एमिताज रोड वॉकिंग इंग्लैंड का किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। श्रीमेलागर रोजबेल में 83 साल की 83-year-old की मिसेस ताहिरा सोमाली, जो ताहिरा से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके बेटे इरफान मुडाबकस के घर शुमेलागा रोजबेल से उठाकर रोजबेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
3: Radio Musti.

अरे मुझको ये क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है, कहाँ हो तो बता दो। 5491094 पर जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सो वेलकम, 6:35 हुए हैं, आप है विद आरएम टू रेडियो मास्टी मनीष, मैं आपके साथ निभा रही है टिल 7 PM। कुछ सूदिंग गाने और कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ हमारे है वापस आपका साथ निभाने के लिए। अमाल मलिक की आवाज़ में, प्रगति नागपाल की आवाज़ में, ये है पहला नशा 2.0।

चलिए यहाँ पर ये गाना चल पड़ा स्पेशली फॉर मॉम गीता जो कि पर्थ पविदोस के रहने वाले हैं। आज वो पूरे 64 इयर्स के हुए हैं। प्रिंग हिप फॉर हर लॉन्ग लाइफ डॉटर स्वीति प्रीति प्रिया की तरफ से मैसेज आया है। हाय हैप्पी बर्थडे टू ईच एंड एवरीवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे इन दिस आफ्टरनून विद आर टू रेडियो मस्ती। यहाँ पर यले शाम ऑफ सूरीनाम के लिए डेडिकेट करते हैं ये गाना स्पेशली फॉर यू माय डियर।

0: शर्मिशा के आवाज़ में टेकन फ्रॉम द मूवी एनिमल 2023 में रिलीज हुई थी ये गाने और दिस वन डेडिकेटिंग टू ऑल द लव बर्ड्स ट्यूनिंग टू आरएमटी रेडियो मस्ती राइट नाउ आई गेट हिट द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर दोस कुकिंग राइट नाउ
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएमटी
1: रेडियो मस्ती
0: हेलो आंटीज दिस वन फॉर यू वैसे दिस सॉन्ग के साथ आंटी इंद्रा आंटी कविता आंटी शोभा एंड आंटी मोमोनोसो एंड आंटी संगीता नॉट टू फॉरगेट हेलो जी हाउ आर यू वेलकम इन माय किचन रेडियो मस्ती के साथ आई एम कुकिंग एंड लिसनिंग वैसे मैं क्रियोल में बता देती हूँ दाल घाम सचिनी पिस्ता लिशू स्पागेटी ओह माय गॉड बन अपीची थैंक यू शुभ आहार आपको सुया बिहारी एंड बगेन फैमिली थैंक यू फॉर द इनवाइट इन योर किचन

0: चलते साथ में गाने का मन करता है बड़ी ही खराब गाती है, लेकिन बात नहीं है, हमारी सारी जो कड़े के सिंगर्स हैं जो रोड पे बैठे हैं ऐसे साइड में बैठकर बस गाने का लुफ्त उठा रहे हैं। क्या बात है, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, आप बैठे हैं बगल में, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है मैडम जी। वैसे यहाँ पर हाई रजनी फ्रॉम अपलैंड पापा विशिंग माई बिलवड साइलेश परमिसा अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विशेज फ्रॉम यशवंत एंड यश्विन परमिसा ऑल्सो।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides, RM2, Radio Musti.
0: वैसे यहाँ पर मैसेज आया है, प्लीज डू प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी धुरंधर, लुत ले गया। एक काम करती हूँ मैं इस गाने के साथ ना, लुत ले गया जोड़ देती हूँ आपके लिए, आपके नाम के लिए।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: आपकी ओर तो हम भी चल पड़े हैं और बस सीधा दिल में घर बनाने के लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. अभी के लिए तो 7:06 हो चुके हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और वैसे मनीषमा के बाद हम ऑल सेट हैं आपको और अच्छे गानों के साथ एंटरटेन करने के लिए. वैसे क्या गाने चलाए मनीषमा ने, एंड इट वॉज ऑल बोम्बास्टिक गाने, सुनकर मजा ही आ गया. थैंक यू सो मच मनीषमा. एंड चलिए के लिए थोड़ा सा टोन डाउन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप थके हारे घर वापस लौट चुके होंगे. तो चलिए आपको कुछ कूल रोमांटिक सूदिंग म्यूजिक के साथ एंटरटेन करने का टाइम आ चुका है. सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. एंड बिल्कुल अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. जी हाँ, फ़ोन कॉल आप बिल्कुल कर सकते हैं ऑन 4282 35 पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294. मे बी आप इस वक्त काम पर होंगे. हाँ, कुछ लोग ऑलरेडी घर पर पहुंच चुके हैं तो कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. आपको विश करेंगे बोंकुहार्ज एंड गारंटी देते हैं कि गाने सुनते सुनते आपका काम भी बस आप आसानी से निपटा ही लेंगे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल फ्रेंड्स, शाम के 7:20 हो चुके हैं, ट्यूसडे इवनिंग, और ऐसे में हम साथ देने के लिए आ चुके हैं इन योर इवनिंग लाउंज। और हमने जैसे आपसे कहा था कि लाइन खुली हुई है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें ऑन 4282835। और चलिए अभी के लिए वी हैव समवन फ्रॉम तेहूज जो इस वक्त कनेक्ट रहे हैं हमारे साथ। हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है?
1: हेलो, मैं सुनीता हूँ तेहूज से।
0: सुनीता जी नमस्ते आपको।
1: जी हाँ नमस्ते,
0: आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। और ऑफ एयर आपसे थोड़ी बातें हो रही थी तो आपने कहा कि पोती का बर्थडे है, तो पोती का नाम क्या है?
1: मेरी पोती का नाम है आकांक्षा कौनाट, वो रहते हैं गुडलैंड, अभी हम उनके ही पास आए हैं।
0: ओके,
1: आज 1 साल के हुई है।
0: ओह, दैट्स अ वेरी स्पेशल एज, तो छोटी सी प्रिंसेस को हमारी तरफ से भी वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: जी हाँ, धन्यवाद। मैं एक गीत मांगना चाहती हूँ।
0: बताइए।
1: ओ नंद से फरिश्ते ये कैसा।
0: अभी के लिए पुराना गाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपके पास कोई दूसरा गाना होगा तो प्लीज।
1: अगर हो सके तो एक हैप्पी बर्थडे का गाना होगा तो बजा देना।
0: ओके, ओके, हम ट्राई करते हैं।
1: उनकी माता है, उनकी माता जी है काजल, और उनके पापा है अखिलेश, और उनकी चाचा है राहुल, उनकी चाची है उजाला, और उनकी जो बहन है कश्याना और पूरवी, उनकी नानी है सीता, उनकी नाना है, उनकी मौसा मौसी है, उनकी गौ नानी है, और सभी कौनाथ परिवार की तरफ से, कल्याचिटी परिवार की तरफ से, और कल्पनाथ परिवार की तरफ से उनकी बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आयु लंबी हो, बड़ी होके अच्छी अच्छी काम करे।
0: ओके, थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड वंस अगेन आकांक्षा को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच। और चलिए, ये थी सुनीता जी ऑल द वे फ्रॉम तेहूज। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो

ऑफ कोर्स लाइन खुली हुई है 1-4-2-8-2-3-5। तो चलिए एक छोटा सा नजराना छोटी राजकुमारी के लिए उनके बर्थडे के मौके पर ये वाला हैप्पी बर्थडे वाला गाना गुजरात स्पेशली टू यू आकांक्षा।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: Hey, hey.

0: You're listening to RM2, Radio Masti.
1: Well, it's taken from the movie Aashiqui 2, Shreya Ghoshal ki awaaz mein sun raha hai na tu, and it's a beautiful gana. वैसे जो लोग प्यार करते हैं उनको ज़्यादा कुछ सुनाने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि वो खुद ब खुद बिना कुछ कहे बहुत कुछ सुन जाते हैं. ये तो हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार में रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो चलिए, ये गाना उन तमाम लोगों के लिए जो शायद इस वक्त रिलैक्स कर रहे होंगे और साथ में हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे होंगे.

0: वेल फ्रेंड्स, 7:45 होने को है। इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है। कुछ प्यार की बातों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और वैसे मैं और मनीषमा भी थोड़ी अफेयर बातें कर रहे हैं, और जब कोई होता है ना स्टूडियो में तो उनसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू मनीषमा टू कीप मी कंपनी। एंड वैसे अक्सर जब हम अकेले रहते हैं स्टूडियो में तो आप लोगों का साथ होता है, आप तो हमारे परिवार हैं और अपनों से भी बढ़कर हैं। वेल वी हैव उषा जी जो इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, तो उषा जी हम जरूर बात करेंगे। एंड चलिए,
1: हेलो
0: उषा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उषा जी?
1: मैं एकदम बढ़िया।
0: आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं कोयंचे से बोल रही हूँ।
0: ओके उषा जी, आप बताइए, आपने डिनर ले लिया?
1: अभी तक नहीं लिया है, अब हम लेने जा रहे हैं।
0: ज्यादा वेट मत करना क्योंकि लेट डिनर लेना बहुत गलत बात है। वैसे हाँ। कहते हैं ना कि 6:30 शुड बी द लास्ट टाइम जब आप अपना डिनर लें, बिकॉज ऐसे में आपको टाइम मिलता है, आपकी बॉडी को भी टाइम मिलता है खाने को हजम करने के लिए। चलिए बताइए, किसी अपने के नाम, अपनों के नाम आपको कुछ खास पैगाम भेजना है?
1: पैगाम शुभकामनाएं मेरी बहन के लिए जो अब उसका हैप्पी बर्थडे हो गया है।
0: ओके,
1: 60 years old।
0: वाओ,
1: और शुभकामनाएं मेरी बहन के लिए। और विशेस, एक जंगल डाल देना मेरी बहन के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये विश, ये बर्थडे विश जो है ना वो हमारी तरफ से गिफ्ट ही होता है।
1: और मैं एक गाना की रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
0: बताइए।
1: गाना ये वादा रहा है के लिए, ये गाना मेरी बहन के लिए और मेरे जीजा जी के लिए और उनके 5 बच्चे हैं।
0: ओके,
1: 4 बेटियां हैं, उनके नाम लेना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, वो एक नाम है योशिना, रेबिका, निशी और खुशी। और ये गाना मेरे पति के लिए भी जो इस समय अभी पीनट्स खा रहे हैं और हंस रहे हैं
0: और आप मुझे इस वक्त हंसा रही हैं, पीनट्स खा रही है। कितनी स्वीट आपने बोला है, वो पीनट्स खा रही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि मूंगफली

0: वो भी एंजॉय करे और आप भी थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर लेना, क्योंकि अकेले अकेले खाना बहुत ही गलत बात होता है।
1: हाँ, और ये गाना मेरी बेटी के लिए जो इस समय वो अपने मोबाइल पे बैठी है और इधर देख रही है पूजा।
0: ये तो हमेशा हम कहते हैं, आई जस्ट होप जब आप लोग डिनर लेंगे ना तो मोबाइल एक तरफ रखना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि मोबाइल इट कनेक्ट्स विद पीपल जो हमसे दूर हैं, लेकिन जो लोग पास होते हैं ना वो उनसे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप घर पर हैं फैमिली के साथ, तो इस बॉन्ड को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए यू हैव टू कीप योर मोबाइल असाइड।
1: और मेरी और एक छोटी बेटी है जो वो इस समय अभी रेस्ट कर रही है, ट्यूशन से अभी आई है, प्रार्थना, वो अभी ऊपर रेस्ट कर रही है।
0: सो नाइस, सो नाइस। आपने पूरा फैमिली का पूरा पूरा माहौल और जो घर का आपका वातावरण है ना, आई कुड फील इट कि एक मोबाइल में है, एक मूंगफली खा रहे हैं और एक हमसे बात कर रहे हैं, और छोटी बेटी जो है ट्यूशन से वापस आके सो रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके छोटा सा छोटे से इस घर में ना किसी की नजर ना लगे और बस प्यार का ही बसेरा हो।
1: थैंक यू, और आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं।
0: थैंक यू सो मच उषा जी, मैं भी आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय उषा जी, टेक केयर। चलिए ये थी हमारी प्यारी सी उषा जी, एंड चलिए अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो वेटिंग फॉर योर फोन कॉल ऑन 4028235 4285 पर आपके फ़ोन कॉल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक बड़े वाला जिंगल हो जाए उषा जी की बहन के लिए।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. वैसे इस गाने की फरमाइश उषा जी ने की है, ये वादा रहा स्पेशली आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। वैसे अगर हो सके जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें फ़ोन करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ कोई 90s या फिर कोई नया गाना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जितना हो सके पुराने गीत तो बिल्कुल हम कल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तब तक के लिए जितना हो सके आप नए गानों और 90s के गीत को आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

0: आपको मिलता है, केयर मिलता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको ना मिले तो इसका मतलब ये है कि शायद वो प्यार इतना गहरा नहीं है। सो प्यार को और भी गहरा करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज कीप डूइंग आवर एफर्ट ईच एंड एवरी डे। और ये एफर्ट आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उनके साथ रोज़ रोज़ जीने से यू फील अ काइंड ऑफ बोर्डम, लेकिन इस बोर्डम को आपको अपने दिमाग से, दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे ऑल योर लाइफ। तो उनको और भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाने के लिए, ब्यूटीफुल हिस्सा बनाने के लिए, बस मन में और दिमाग में प्यार से ही उनके बारे में सोचें और प्यार से ही बात करें। चलिए कुछ और प्यार भरी बातों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti. वेल 8:20 हो चुके हैं। जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ, थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए। वैसे कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, वो ज़िंदगी नहीं बनते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आपको प्यार में धोखा मिलता है तब भी आपको एहसास होता है कि जब आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी से प्यार करो तो उनको ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाओ। जब भी वो ना रहे तो आपको लगे कि ज़िंदगी का एक हिस्सा चला गया है, ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। सो चलिए, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना टू ऑल दोज जो इस वक्त प्यार में डूबे हुए हैं, ग्लेन जॉन की आवाज़ में, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जब हम इस गाने को ऑन रिपीट सुनते थे, स्पेशली जब बहुत सारे लोग कैन रिलेट, स्पेशली जो लोग कॉलेज के ज़माने में थे और ये गाना रिलीज़ हुआ था नया नया, तो ये बहुत सारे यंगस्टर्स का फेवरेट गाना बन चुका था। और उस ज़माने में तो नया नया हेडफोन निकला था और लोग इस गाने को ऑन रिपीट सुनते रहते थे। और ऐसे गानों को सुनने के बाद पूरी खूबसूरत यादें सामने आ जाती हैं और तब एहसास होता है कि सच में लाइफ कितना फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है।

0: वेल, हमने भी मान लिया कि हम आपके बिना तो रह नहीं पाएंगे, इसीलिए तो बहाने ढूंढकर आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आते हैं। और जो लोग प्यार करते हैं ना, उनके लिए बस बहाने ही काफ़ी होते हैं मुलाकात करने के लिए। चलिए, यहाँ पर आप कहते हैं हेलो दिव्या जी, अमेजिंग सॉन्ग्स एंड कोई भी 90s का गाना इफ़ यू कुड प्लीज़ प्ले फॉर माई हबी ऋषि रामजीत ऑफ खैफकेयर। आज आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं 30th वेडिंग एनिवर्सरी। वाओ, 30 years, बस एक नहीं, दो नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 30 साल का सफ़र आपने साथ मिलकर तय किया है। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम वाइफ सचिता रामजीत। आपकी दो बेटियां हैं सृष्टि एंड स्मृति। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए सचिता जी, एंड आपको मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज फॉर योर मैरिड लाइफ। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप लोग सुख दुख के साथ ही बने एंड यू गेट मेनी मोर ईयर्स टू सेलिब्रेट टुगेदर। एंड यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, थैंक्स दिव्या फॉर दिस लवली सॉन्ग। चलिए, वेलकम, एंड उम्मीद करते हैं कि कुछ और गीत जो आप सुनेंगे टिल 9 PM, उनको सुनने के बाद आप ज़रूर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और भी प्यार में डूबते रहेंगे।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2
1: Radio Masti।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, 8:46 already, Lataji and Udit Narayan ki awaazon mein khoobsurat sa ye gana goes out specially for Akhilesh and aapke beautiful fiance ke liye. I don't know if I should be taking the name, lekin chaliye naam ko abhi ke liye thoda sa gumnaam rakhte hain. So Akhilesh, this one goes out specially for you and your beautiful fiance. वैसे अखिलेश ने कहा, if you could please tell one word for me. देखिए, यहाँ पे रेडियो में हम बस एक वर्ड नहीं बोलते हैं क्योंकि हम non-stop बात करते रहते हैं. So this one goes out specially for Akhilesh and his beautiful fiance, जो इस वक्त drive करके घर वापस जा रहे हैं. चलिए इस ड्राइव को और भी रोमांटिक बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि मूड को हम थोड़ा और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं इस गीत के जरिए. सो दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू अखिलेश एंड फॉर योर ब्यूटीफुल फियांसे.

0: आई जस्ट होप कि आपके प्यार को भी कभी किसी की नज़र ना लगे, हमेशा जिससे आप प्यार करें उसको आप ज़िंदगी में पाओ और उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताओ। वेल 8:55 हो चुके हैं और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाई टू ऑल ऑफ यू। कल हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। तब तक के लिए बस दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: स्वागत आप सभी का, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है RM2 और लेट नाइट ग्रूव्स, मैं विकास आपके साथ, और 3 घंटे का टाइम फिक्स हो चुका है म्यूजिक के साथ। ये जो अपॉइंटमेंट है जहाँ पर अलग अलग स्टाइल के गाने होंगे, अलग अलग सिंगर्स होंगे और सुपर हिट गाने होंगे, वो सब सेट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। सो पूरे दिन की भाग दौड़ी के बाद ये रखो याद कि RM2 है आपका साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी। रेडी के बाद स्टेडी, लेट्स गो।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.
2: जिंदगी में हर सुबह एक नई बिगिनिंग लेकर आती है। आज का दिन, इतने सारे एक्सपीरियंसेस और जाने पूरे दिन में क्या क्या हुआ होगा, इसलिए परेशानियों को छोड़ो, कल की जो होप है उसके साथ नाता जोड़ो। कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी इस कहानी को समझेंगे और साथ में आपको हौसला देंगे। पर ज़रूरी है, चेहरे पर एक मुस्कान ले आना आसान तो नहीं है, लेकिन ये दिमाग की कंडीशनिंग है, इसलिए दिमाग को हल्का रखिए और उम्मीद को जिंदा रखिए।

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: ये म्यूजिक के जरिए जो रिश्ता पैदा हुआ है, आपका हमारा जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहाँ पर सॉरी बोलने में ईगो ना हो और थैंक यू कहने में कंजूसी ना हो। कितनी कमाल की बात है ना, छोटी छोटी बातें दिल जीत लेती हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: सुबह नींद खुली और उसके बाद जैसी हकीकत से नजरें मिलती हैं तो फिर भागा दौड़ी शुरू, लेकिन कभी कभी रुकना, थोड़ा रुक जाना भी जरूरी होता है। हर रेस जीतना ही जिंदगी नहीं, कुछ पल सिर्फ जीने के लिए भी होने चाहिए। समुद्र की लहरों की तरह दिल को भी कभी शांत रखना सीखिए।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: दोस्ती यारी ये कितनी जरूरी है ना। वैसे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ पार्टी में याद आए, दोस्त वो है जो उदासी में भी हंसा दे, जो बोले चल थोड़ा सा वक्त साथ में बिताते हैं, थोड़ा हंसते हैं, गुनगुनाते हैं और आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसे दोस्तों को याद कीजिए और एक मैसेज तो बनता ही है बस।
4: रिका

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti. In the mix. Radio Musti. In the mix.
1: एक खुशहाल फैमिली होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग। इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। उसको पता है कि मैं अकेला नहीं और मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और उनके आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका साथ है, तो फिर लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम है। घर का प्यार कभी ओल्ड फैशन नहीं होता, बस उसकी वैल्यू को समझना चाहिए।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: दुनिया है गोल और इस दुनिया में हर कोई निभा रहा है अपना अपना रोल और हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है और वो उस कहानी का हीरो या हीरोइन। बस प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, आपकी जर्नी भी किसी फिल्म से कम नहीं। इंटरवल के बाद कहानी और इंटरेस्टिंग होती है।
1: You're listening to RM2, a Radio Mastery.

0: रेडियो मस्ती।
1: इंसान परफेक्शन की तरफ भागता है। वैसे जब प्यार मोहब्बत की बात होती है तो इसमें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन सच्चा होना हाँ ये जरूरी है। दिल साफ हो तो छोटी बातें मैटर नहीं करती, और जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ साइलेंस भी कॉन्वर्सेशन लगता है।
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
4: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
4: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
3: हिट म्यूजिक ओनली।
4: रेडियो मस्ती, फील्स अ मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: Hit music only.
1: Feels a Masti.
3: एक सिचुएशन को आप कैसे दिल पे लेते हैं, कैसे उसका सलूशन ढूंढते हैं, ये तो हर किसी पर डिपेंड करता है ना। और चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये एक अपने आप में हुनर है। वैसे मुस्कुराहट फ्री होती है पर उसकी वैल्यू बहुत महंगी होती है। कभी किसी का दिन बस एक सिंपल सी स्माइल से अच्छा हो जाता है, तो दिल खोल के हंसा कीजिए, क्या पता किसी को उसकी जरूरत हो।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: हर किसी को अपनी अपनी वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि वक्त सबका आता है। आज जो आपके साथ चल रहा है कल शायद आपसे आगे निकले, इसलिए इंसानियत कभी मत छोड़िए, साथ निभाइए और किसी का सपोर्ट सिस्टम बन जाइए।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty
1: in the mix.
2: Ladies and gentlemen, आप सुन रहे हैं Late Night Grooves RM2 पर, और अलग अलग स्टाइल के गानों के साथ धीरे धीरे वक्त भी कटता जा रहा है, और वो कहते हैं कि गुड टाइम्स फ्लाई, और ऐसे ही उड़ते उड़ते वेव्स में RM2 का म्यूजिक आप तक पहुंच रहा है। मुस्कुराते रहिए, साथ देते जाइए।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: गानों को सुनकर जो चैन सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग है। खुश रहना एक हैबिट है और हर दिन उसकी प्रैक्टिस करना ये भी जरूरी है। प्रॉब्लम्स तो फ्री में मिल सकती हैं पर सुकून खुद ढूंढना पड़ता है, इसलिए अपने लिए भी वक्त निकालिए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए इसी के साथ अभी फिलहाल मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। जी RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स यहाँ पर फिलहाल समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्दी मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, म्यूजिक के साथ जुड़े रहिए RM2 पर। अभी के लिए नमस्कार।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते